0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Pujya Mataji ke punit charno mein vandan aap sab ki taraf se, संस्था की तरफ से और सभी यहाँ जो स्टाफ मेंबर है उन सब की तरफ से महाराज माता जी को वंदन करते हैं। आज त्रयोदशी है, गणपति की जो अभी धूम मची है उसके बीच जो माता जी का आगमन एक शुभ चिन्ह है और माता जी ने जो विषय भी लिया है शिव महिमा, माता जी हम 28 तारीख तक यह प्रवचन द्वारा माता जी द्वारा रहेगी, प्रातः प्रवचन द्वारा, सायं भी माता जी को सुनने का आयोजन किया गया है जिसकी जाहिरात माता जी के प्रवचन के बाद होगी। आप सब की तरफ से फिर से माता जी को वंदन करते हैं। हरिओम।
3: बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बा मैया की जय।

शिवाय नमः शिवाय च शिवतराज शिवतराज सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की न्याही प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए प्रातःकाल की इस पावन बेला में नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा, अब की बार भगवत चर्चा। गिरीश भाई के मेरे को फोन आते रहे कि माता जी आप बोलेंगे किस विषय में, और प्राय वो दिन था शायद सोमवार का और सावन का महीना, तो मैंने कह दिया शंकर जी पर बोलूंगी, शिव महिमा पर। बार बार पूछ रहे थे किस विषय पे बोलेंगे गिरीश भाई अपने चिमन भाई, तो विषय तो कुछ सोचा नहीं था, और फोन आ रहे थे मुझे इनको हमें जाहिरात करनी है, बतानी है, बताओ बताओ। और ये सच बात है कि मैं पूर्व कुछ निश्चित नहीं करती हूँ, ठीक है, उस समय जो प्रेरणा होगी जो मन में आएगा बोलना तो भगवान का ही नाम है, वाचा रमणम नाम अधेयम, ये तो एक नाम का भेद मात्र है, तत्वतः तो एक ही है, चाहे उसे शिव कहो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे नारायण कहो, अनेक नाम है, अनेक नामों में अनेक रूपों में जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, व्यापक सनातन नित्य शुद्ध मुक्त परम तत्व, वह तो एक ही है, एक ही अविनाशी है, परंतु नाम रूप के द्वारा हमने उन्हें अलग अलग किया हुआ है। बोले इन नाम रूपों की बड़ी भारी महिमा है, नाम रूप से रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है, जगत दो ही चीजें हैं, नाम और रूप, और हम लोगों को अच्छा अभ्यास है नाम रूप के सहारे अपने मन को चलाने का, मन को दौड़ाने का, तो इसीलिए मन संसार की ओर चलता है बोले नाम रूप के पीछे, और इस संसार से मन को हटाने का उपाय भी एक ही है, नाम रूप का आश्रय, भगवान के नाम और रूप का आश्रय लेकर के संसार को से अपने मन को बड़ी सहज रीति से निकाला जा सकता है, तो इसलिए भगवान के नाम का परम आश्रय लें, वो चाहे कोई भी नाम हो, तो उसमें जो आदि सनातन शिव है, मैंने कहा शिव महिमा पर बोलेंगे, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं मंगल को, शिव का अर्थ होता है शुभ, जहां शिव नहीं वहां शुभ कैसा, शिव शुभ है, कल्याण है, मंगल है, और हम सब लोगों की चाह क्या है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, और हम सबके लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हो, तो सब सुखी किससे होंगे, सबका कल्याण किससे होगा, सबका मंगल किससे होगा, बोले मंगलम मंगलानाम, मंगलों में जो मंगल, और पावनम पावनानाम, जो पावन में पावनता प्रदान करे, मंगल में मंगलता प्रदान करे, और जो सर्वत्र शुभ प्रदान करे, उसी का नाम तो शिव होता है, शिव ब्रह्मा भी हैं, शिव विष्णु भी हैं, और शिव रुद्र भी हैं, और शिव शक्ति भी हैं, शिव गणेश भी हैं, शिव नारायण भी हैं, अर्थात शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत अनंत नाम है, और शिव स्वरूप, ये शिव कौन, बोले ये शिव के रूप में विराजमान साक्षात आपके हृदय में जो विद्यमान नारायण है, आत्मा है, वही शिव है, इसलिए शिव कोई अन्यत्र नहीं, शिव तो निज स्वरूप है, इसीलिए तो आत्माष्टक आप बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं, शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है, जो शिव, इसीलिए कहा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, उस शिव की महिमा, जो शिव
सर्वव्यापक है, जो परिपूर्ण तत्व है वही शिव है नारायण। और शिव के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वेद हमारे पंचदेव उपासना का विधान बताते हैं, वेदों ने भगवान के दोनों स्वरूपों का निरूपण किया। भगवान सर्वगुण भी हैं और साकार भी हैं, परमात्मा निर्गुण भी है और निराकार भी है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए, निर्गुण निराकार को समझने के लिए साकार है, यदि साकार न हो तो निराकार कैसे समझा जाए, और यदि निराकार न हो तो फिर ये सगुण साकार कैसे ये न हो। तो इसलिए वो निर्गुण भी होते हुए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है, अर्थात जो निर्गुण जिनके गुण निरंतर अर्थात जिनके गुण अनंतर हैं, जिनके कौन सा गुण उनमें नहीं है, जो अनंत गुण, अनंत नाम नहीं है। कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, माने नाम उसके इतने अनंत हैं कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा रूप नहीं है, अर्थात वो अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण। ये गुण नाम क्रिया के साथ जैसे जैसे परमात्मा अपने अनंत रूपों में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त करके प्रकट करते हैं, प्रकट कैसे करते हैं, बोले अनंत रामों से, अनंत रूपों से, परंतु उन अनंत नाम रूप में प्रथम चार पांच नाम और पांच रूप बड़े प्रधान हैं। इसको कहते हैं पंचोपासना, पंचदेव उपासना। उपासना वेद की जो पद्धति है उसमें दो, जो उपासना की पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है, बोले जो सनातन काल से, वेदोक्त काल से चली आ रही है निरंतर पंचदेव उपासना, अनंत नामों में, अनंत रूप में पांच देवता, जो पांच में एक तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देव हैं, और गणेश जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये पंच देव हैं। इन पंच देवों में सूर्य नारायण और भगवान नारायण, जिन्हें सत्य नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, वद्री नारायण कहो, नर नारायण कहो, अर्थात ये तो एक ही है। सूर्य और नारायण एक है। ये पंचदेव में गणपति, भगवती दुर्गा और भगवान शिव, ये सदा शिव है, पराम्बा, ये भगवती शिवा है और उनके संग में नित्य विराजने वाले भगवान शिव हैं, अर्थात परमेश्वरी और परमेश्वर। परमेश्वरी पराम्बा के साथ जो भगवान शिव और उनके संग में सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ये तीनों तो एक साथ हैं। प्राय आपने ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, गौरी शंकर के संग गोद में विराजमान हैं, बोले कौन, भगवान श्री गणेश। तो गणेश तो गणनायक हैं, प्रथम देव हैं, और ये तीनों एक हैं। अर्थात बात क्या आई, बात ये आई कि नारायण और शिव, हरि और हर, वास्तव में क्या ये दो है, बोले नाना ये दो नहीं है, हरि हर की सनातन एकात्मता है, सनातन रूप से एक है, कभी नारायण तो कभी शिव, कभी शिव तो कभी नारायण, नारायण और शिव में कभी कोई भेद नहीं है। अर्थात शिव द्रोही मम दास कहावे, भगवान कहते हैं जो शिव का द्रोही है, शिव के साथ द्रोह करता है और मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो नर तो मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, वो कभी मेरा उपासक नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों
एक है कहने के लिए अनेक हैं, दो हैं पर वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे रुपए का सिक्का एक होता है और उसके भाग दो होते हैं, दो भाग में दिखने वाला सिक्का एक है, उसी तरह से सनातन परिपूर्ण तत्व तो एक है। तत्व तो एक हो, एक हो हम द्वितीय एक होते हुए भी वो दो रूप में, अर्थात जैसे द्वितीय दो दूसरा नहीं है, पर दूसरा न होने पर भी दूसरा अपने आप को कर लेता, प्रकट करता है इस रूप में, जिससे कि उन्हें सृष्टि की जगत की ये लीला खेल खेलना होता है भगवान शिव के संग। इसीलिए भगवती की जब पूजा की जाती है तो कहते हैं पार्वती परमेश्वर अर्थात कलो चंडी विनायक, कलो उमा महेश्वर, शक्ति महेश्वर, शक्ति के संग या तो महेश्वर की पूजा होगी और शक्ति के संग गणपति की पूजा होगी, गणेश जी और भगवती अंबिका की पूजा और अथवा शंकर और पार्वती की पूजा। तो ये दोनों रूप तीनों तो एक ही हैं, इसलिए ये पंच देव आराधना हम सबों के लिए नित्य मंगलकारी है, नित्य कल्याणकारी है और नित्य ही ये हम सब के लिए शुभ करने वाली है। इनमें से किसी को छोड़ करके कोई व्यक्ति सोचे कि हमें मंगल की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, सो संभव नहीं नारायण। इसलिए आइए इनमें से जो आदि सनातन भगवान सदा शिव है, शिव समान को दाता नहीं, शिव के समान भला और कौन दाता है। शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको महिमन स्तोत्र में आप कहते हैं महिमना पारंते, महिमा जिसकी अपार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। बोले ये महिमा, शिव महिमा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले कीर्ति का श्रवण करो, यश का श्रवण करो, श्रवण करने से हमारी उपासना में तीव्रता आती है। सुनना क्यों है, श्रवण क्यों करें? बोले जीवन में उपासना में भक्ति में तीव्रता लाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, गतिशील होनी चाहिए, गति देने के लिए हम अपनी उपासना, हम शिव भक्त हैं ऐसा मान करके अपने आप को ठहरा न ले वहीं पर, अर्थात हमारी भक्ति में हमारी उपासना में इतनी तीव्रता हो, गति हो कि हमारे अंदर आतुरता आए कि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। उस तीव्रता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक तीव्रता नहीं होगी, बात तीव्रता लाने की है। ये महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि पंचदेव उपासना के मार्ग में जो हमारी स्थिरता आ गई है, क्योंकि तीव्रता नहीं होगी तो याद रखना प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार के निरंतर के श्रवण करने से, एक बार नहीं अनेक बार किसी के विषय में सुना जाता है तो सुनते सुनते सुनते उसमें हमारे भीतर आतुरता आती है कि जिसके लिए हम इतना सुन रहे हैं वो हमें मिले तो सही, परमात्मा मिले तो सही, शिव मिले तो सही। ऐसी आतुरता अपने भीतर लाने के लिए हमें उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। बोले पहली भक्ति है श्रवण, सुनने से तीव्रता आती है। तो क्या सुनना चाहिए? बोले भगवान की कीर्ति सुननी चाहिए, भगवान का यश सुनना चाहिए, भगवान की महिमा सुननी चाहिए। श्रवण करने के लिए महिमा है तो इस महिमा का श्रवण करें, शिव की महिमा का श्रवण करें। महिम न पारंते, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जिस महिमा को स्वयं शारदा माँ भी उनकी महिमा का गान करने लगे ना, आप लोग निरंतर बोलते हैं असतगिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतर वरु शाखा लेखनी पत्रम रुवि लिखित गिरित्वा शारदा सर्वकालम
तदभितब गुणानाम ईश पारम नयाति, कि स्वयं शारदा माँ भी तीनों कालों का पर्याप्त समय लेकर के और सब वनों की लेखनी बनाकर, सब समुद्रों की स्याही बनाकर, अखंड ब्रह्मांड का कागज बनाकर सर्व काल में लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकती हैं, इतनी अपरंपार महिमा है। पर फिर भी ऐसी अपरंपार महिमा श्रवण करते हुए एक जन्म नहीं अनंत जन्म हमारे लग जाए तो भी उनकी महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे या गा पाएंगे ये कहना तो संभव नहीं, परंतु फिर भी जितना हमें समय मिले अधिकश्य अधिकम, ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को, अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनना चाहिए। बोले सुनना क्या चाहिए, उनकी महिमा। महिमा कैसी है, ये शिव कैसे हैं, कि एक बार सृष्टि के कार्य में पूर्व समय की बात है कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी चले भगवान श्री हरि विष्णु के पास, और जब ब्रह्मा पहुंचे तो जाकर खड़े हो गए। खड़े हो गए तो सोचा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा, सकल सृष्टि का नायक, सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए मैं विधि हूँ, विधाता हूँ, तो मुझे नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और जाति में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और श्री हरि नारायण सोचते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, पद्मनाभ, पद्म के नाभ से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। कहा कि आकर खड़े हो गए, शिष्टाचार धर्म भी भूल गए कि इन्हें आकर के पुत्र को पिता के सन्मुख हाथ जोड़ करके शीश नवाकर पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए, ये शिष्टाचार धर्म छोड़ दिया। भगवान श्री हरि को बुरा लगा और

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: आना निश्चित है, अभी आया नहीं है। उस दुख के रोकने के लिए तुम उपाय करो। इसलिए योग का प्रयोजन क्या है? दुख को रोकने का। कौन से दुख को? गत दुख को तो गया, उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं। वर्तमान में जो आ गया वो आ चुका है, इसलिए वो जाएगा। आ ही गया तो उसको भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं, कोई उपाय नहीं है। फिर किस दुख को रोकना चाहिए? बोले अनागतम। अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है। तो ये बात तुम जब जवान थे उस समय ये सोचा होता कि बढ़ोतरी में घुटने का दर्द होगा, बढ़ोतरी में कमर का दर्द भी होगा, इसलिए पहले ही जवानी में ही हमको सावधान रहना चाहिए। कम खाकर स्लिम बॉडी रखते तो घुटने का दर्द न होता। उस समय यदि तैयार किया होता तो आज घुटना दुख न घुटना दुखता न कमर दुखता। बोलो। और उस समय तो खाएगा, यही तो जवानी है, खाने का समय यही है, खाने का समय यही है। करते गए खाते गए, खाने का समय यही है। बुढ़ौती में तो खा नहीं पाएंगे, अभी तो खाने का है। और खाते गए, शरीर बढ़ता गया, अब क्या करोगे? चर्बी बढ़ती गई, अब क्या हो रहा है? हैं? अब दुख आ रहा है फिर रोते रहो, दुख आ रहा है। तो उस समय यदि ये सूत्र का ध्यान दिया होता, हेयम दुखम अनागतम, ये बुढ़ौती में अनेक प्रकार के रोग आएंगे, वे रोग को कैसे रोका जाए, अभी से तैयारी करो, उसी का नाम योग है। बस बुढ़ौती में करने का नाम नहीं, पहले करने का नाम है योग। कष्ट आ जाने के बाद, समस्या आ जाने के बाद करने का नाम योग नहीं है। और आज जितने भी योग साधना करने वाले योग अभ्यास करने के लिए आते हैं, सब रोग से ग्रसित हुए हुए ही आते हैं। कौन आते हैं? रोग से ग्रसित हुए हुए आते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि रोग से ग्रसित हुए हुए को योग काम नहीं करता। योग किसको काम करता है? रोग से जो ग्रसित नहीं है वो योग करेगा तो आने वाले जो रोग हैं उससे वो बच सकता है। रोग आ ही गया तो बचने का कोई उपाय नहीं है? हमको क्या पता था, पहले हमने ख्याल ही नहीं रखा। ये शरीर में मधुमेह होगा, शुगर आ जाएगा, पहले हमको पता नहीं था है? मई महीने में हम हमेशा पहले मई महीना प्रेम कुटीर करते थे, एक महीना चर्च गेट, और जून यहां करते थे। ये बहुत सालों से चल रहा है, 200-2500 साल से। लेकिन अभी प्रेम कुटीर तो हमने छोड़ दिया, 12-14 साल ही हो चुका है, वहां नहीं जाते हैं। पहले प्रेम कुटीर पहले मई करते थे और जून यहां, गर्मी का सीजन हमारा बंबई ही होता था। तो एक बार मई में जब हम प्रेम कुटीर गए तो बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी था। तो वहां एक बहन थी, बहुत सेवा करती, संतों की सेवा, केवल हमारी बात नहीं, जो कोई भी वहां कथा करने के लिए कथाकार महात्मा जाते थे वो पूरी सेवा निष्ठा से सेवा करती थी। तो उन्होंने क्या किया, महाराज बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, हमने कहा गर्मी तो अच्छा, दूसरी बात यहां तो एसी था, वहां एसी भी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, और गर्मी मई का महीना, भयंकर गर्मी। तो वो क्या करती थी, सुबह ही सुबह मौसमी का जूस ला के दे दे। तो अभी एक महीना हमको वहां रहना है, उन्होंने विचार किया कि महाराज जी को रोज एक महीना मौसमी का जूस पिलाएंगे। तो एक ही बार मौसमी खरीद के ले आई, बोरा का बोरा। नौकर को कहा एक बार ले आओ, एक महीना तक महाराज जी रहेंगे, उनको जूस पिलाना है। संयोग से वो जूस मौसमी थोड़ा खट्टा निकला है। अब रस निकाल के पिए तो एकदम खट्टा। अब क्या करने लगे कि ग्लूकोज डालकर, 3-4 चम्मच ग्लूकोज डालकर वो मौसमी की रोज पिलाना शुरू कर दिए। अब फिर उनके जो लंदन में कोई थे संबंधी, वहां से चॉकलेट भेज दिया उसने, स्वामी जी के लिए करके लंदन से चॉकलेट आ गया इतना। और हम फिर चॉकलेट भी खाना शुरू कर दिए है, और ग्लूकोज डाल डाल के मौसमी पीने शुरू कर दिया, कोका कोला पीने शुरू कर दिए। बोलो अब क्या होगा, बोलो है? डाया भाई की बेटी तो आना निश्चित ही था, आ गई डाया भाई की बेटी। ये डाया भाई की बेटी के लिए कोई जवान व्यक्ति पसंद नहीं आता है, वो उसको तो बुढ़ा ही चाहिए है? कैसी है पता नहीं, वो डाया भाई की बेटी है? आ गई है? अब हमको तो पता नहीं, आप खूब खाए आम, फिर मई महीने तो फिर आपूस आम, सुबह भी आम शाम को भी आम, सब चीज एक ही साथ पड़ा। अब हमने ख्याल ही नहीं रखा कि इसका ये रिएक्शन होगा। खाते गए, वहां के बाद जब यहां आए, यहां भी वही शुरू हो गया। ये तो भगवान की, भगवान शिव की क्या पता नहीं कहां से क्या प्रेरणा हुई कि हमारे प्रतिमा बहन आजकल नहीं आती है, बीमार हो गई। उसको बेटे ने अमेरिका से वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन आता है ना, टच वन है, वन टच डायबिटीज चेक करने का, वन टच होता है ना, एक ही बार पिन करो फिर स्ट्रिप में, मशीन भेजा। तो उसने कहा बेटे ने मशीन भेज दिया स्वामी जी। हमने कहा कैसा दिखाओ, लेके आई, खोल के दिखाया। उसने कहा कि आपका टेस्ट करते हैं, तो ओपनिंग ही हमसे करना चाहती थी वो, आपसे ओपनिंग करें। ये भगवान शिव की कृपा थी भाई। जब उसने मशीन खोला, सेट किया पढ़ के, और लोई निकाला और उसमें लगाया, तो वो काउंटिंग शुरू हुआ। तो कितना हुआ था पता है तुम लोगों को? 393। अभी भी वो 393 वो याद है, बाय हार्ट है पहली बार। वो तो घबरा गए, स्वामी जी क्या हुआ? आपको तो शुगर बहुत भयंकर है। अरे भाई नहीं है भाई, हमारे को कोई शुगर शगर नहीं है, तो शायद इसको ऑपरेट कर नहीं पा रही है ठीक से। फिर उसने पढ़ा, इधर किया उधर किया, फिर दोबारा टच किया, फिर टेस्ट करते, फिर वही 393 94, एक पॉइंट और बढ़ गया उतने में। तो फिर डॉक्टर अतुल को कहा कि स्वामी जी को ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा किया। तो उन्हें फिर दूसरे दिन ब्लड ले गए और लेबोरेटरी टेस्ट किया तो 400 क्रॉस कर गया दूसरे दिन। तो हे भगवान, फिर तब से ब्रेक लग गया, हे यम दुखम अनागतम। लेकिन वो आ ही गया था तो अब क्या करते, आ ही गया तो अब क्या करेंगे, भोगे रहो, लगे रहो, भोगे रहो है? तो अभी तक वो उसने डायबिटीज की बेटी ने तलाक नहीं लिया है, है? मुझे लगता है वो लेगी भी नहीं, इतनी फैसिलिटी उसको मिल रहा है, क्या तलाक लेगी वो। खाने को फोकट में मिल रहा है, रहने को फोकट में मिल रहा है, पसीना बहाना नहीं है, है? आराम से रह रही है, तो तलाक क्यों लेगी वो। शायद हम कहीं पसीना बहाना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, पैदल चलना शुरू कर दें, खेत फावड़ा चलाना शुरू कर दें, लकड़ी काटना शुरू करें, शरीर से खूब पसीना बहा दें, तो वो क्या सोचेगी, ये अब काम करने लग गया, इसके पास रहना ठीक नहीं है। शायद तब जा सकती है, लेकिन इतनी फैसिलिटी है तो अब कहां से जाएगी वो। रोज लोगों के घर खाना खाना है, एक ही भी नहीं है, हजार वेराइटी महाराज, कई नहीं, एक दिवस तो चाल से, तो खिलाने वालों के लिए एक दिवस है। आप क्या रोज आओ छो, तुम्हें साल में एक बार आओ छो, तो एक दिवस तो चाल से। अरे भाई तुम्हारे लिए एक दिन है, यहां तो रोज है, है? आज उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां। तो अब ये डायबिटीज की बेटी क्या तलाक लेगी, है? निश्चिंत बैठी है, बैठे रहो, हम भी कहते हैं बैठे रहो, है? चलो आज कहां गए हम लोग, बोलो। हाँ, ये देखो हठ योग क्या है, तो वह प्रारब्ध भी छूता नहीं। जब तक आप निर्विकल्प समाधि में रहेंगे, आपका प्रारब्ध भी प्रतीक्षा करता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निर्विकल्प समाधि में बैठे रहे तब तक प्रारब्ध आया गया तुमको पता ही नहीं चला। यदि तुमको पता नहीं चला तो प्रारब्ध सार्थक नहीं होगा। हाँ, ये प्रारब्ध कैसा है पता है? यदि तुमको किसी से अनबन हुई और उसको तुमने खूब गाली दी और तुम्हारे गाली को वो हंसते हुए सुनता रहा, तो तुमको ग्लानी होगी कि इतना गाली देने पर भी वो नहीं सुन रहा है, तो इसको गाली देना ही बेकार है। कहेंगे कि नहीं सुन लो, तुमने गाली दिया और तुरंत सुनते ही वो एक्शन में आ गया, तो तुम्हारा गाली देना सार्थक हुआ। गाली दिया वो एक्शन में नहीं आया तो गाली बेकार गया कि नहीं, है? गाली बेकार चला गया। इसी तरह प्रारब्ध आवे, और जिसका प्रारब्ध है उसको प्रारब्ध आया ये पता न चले तो प्रारब्ध का क्या प्रयोजन हुआ। उसको पता चलाना, चलना चाहिए, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों उस जिसका प्रारब्ध है उसको अनुभूति होनी चाहिए, है? ये अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वेदना होनी चाहिए। वेदना का अर्थ अनुभव, अनुकूल का सुख भी अनुभव होना चाहिए, प्रतिकूल का दुख भी अनुभव होगा तो, भोक्ता को अनुभव होगा तो प्रारब्ध सार्थक हुआ, भोक्ता को अनुभव नहीं हुआ प्रारब्ध निरर्थक। इसका मतलब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, वो प्रतीक्षा करता रहेगा जब तक तुम उसके वेदन यानी अनुभवकर्ता के रूप में तैयार नहीं होगे, तब तक प्रारब्ध क्षय नहीं होगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। तो शंकराचार्य ने कहा सौवरी ऋषि कितने वर्ष तक रहे जल में, भागवत में लिखा, नौवां स्कंद पढ़ लो सौवरी ऋषि के सारे करतूत। हाँ, 10,000 वर्ष तक जल के अंदर बैठे निर्विकल्प समाधि में, प्रारब्ध और वासना प्रतीक्षा करके बैठा है, वो बिल्ली की तरह जो चूहे निकलेगा तो मैं झपट लू। सौवरी ऋषि ने जैसे आंख खोली झपट लिया, उसने तुरंत पकड़ लिया, प्रारब्ध और वासना दोनों ने पकड़ लिया। देखो यदि राजयोग में लगे होते तो वासना क्षय हुआ चुका होता, प्रारब्ध रहता तो केवल प्रारब्ध पकड़ता, क्रिया योग में लगा हुआ होने के कारण वासना भी क्षय नहीं हुआ था, तो वासना भी प्रतीक्षा कर रही थी और प्रारब्ध भी प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों ने झपट लिया एक ही साथ, और सौवरी ऋषि अकेला और झपटने वाले शत्रु दो, पकड़ लिया दोनों तरफ से। क्या हुआ नाटक आगे तो आपको पता ही है, हमको बताने की जरूरत है, है? आपके सामने ही हुआ है ना सौवरी ऋषि की घटना, है आपके सामने हुआ ना, अरे रोज अपने साथ ही हो रहा है उनकी घटनाएं, पकड़ लिया और मछली की क्रीड़ाओं को देखते ही बस प्रारब्ध और वासना दोनों ने आक्रमण कर ली, तो बोले आहा जिंदगी तो ये है जीवन का रहस्य, सारा जीवन का सार तो यही है। ये 10,000 वर्ष तक मैंने ऐसे ही प्रारब्ध बेकार समय वैसे बर्बाद कर दिया, क्या जीवन देखो, ये मछलियों के जोड़े आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा तो फिर निकले पानी के बाहर, और उस समय मानदाता ऋषि के यहां पहुंच, मानदाता राजा के यहां पहुंच गए, उनको पता चला कि इनके यहां 50 कन्याएं हैं एक से एक सुंदर, बस याचना कर ली कि राजन मेरी इच्छा है कि एक कन्या तुम मुझे दो, मुझे संसार करने की इच्छा है। राजा बड़ा असमंजस, 10,000 वर्ष पानी के अंदर बैठा, शरीर तो अन्न खोजता है, शरीर क्या खोजता है, अन्न खोजता है, अन्न नहीं खाया था इसलिए शरीर हट्टा कट्टा तो था नहीं, बूढ़ा सूखा हुआ पीला पड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि इतनी सुंदर कन्या मेरी है अप्सरा जैसी, और ऐसे ये बूढ़ा और खसोट को दे दूं, कन्या क्या कहेगी, कहीं मेरी कन्या ये नहीं कहेगी, इस तरह यदि ऐसे बूढ़ों के साथ ब्याह कराना था तो पैदा होते ही क्यों नहीं मारा हमको, कितनी पीड़ा होगी उसको, अब यदि नहीं कहता हूं तो ये तपस्वी खतरनाक है, श्राप दे देगा, सारा कुल नाश भी हो सकता है, क्या करूं। तो विचार किया कि महाराज आप जाइए, जो आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लो। राजा ये समझता था कि इस बूढ़े को देखकर कोई भी पसंद नहीं करेगा, कह दिया जो पसंद करेगा उससे शादी कर लो। सौवरी ऋषि समझ गया कि राजा की बदमाशी चालाकी चल रहा है, वो ये शरीर को देखकर विचार कर रहा है कि कोई भी पसंद नहीं करेंगे, समझता होगा मैं वहां पहुंचने से पहले अपने शरीर को ही कायाकल्प कर लेता हूं। तुरंत योगी तो थे ही, संकल्प कर ली, शरीर तो ऐसा युवा शरीर दे दिव्यमान, क्या दिव्य शरीर, भागवत में आता है ना साक्षात मनमथ मनमथ है, कृष्ण को जब गोपियों ने देखा ऐसा सुंदर देखा कि ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव ही यहां आ गया है? आप लोग दही को मतते हो लेकिन मन को मतते हो कि नहीं, मत मन को मतने क्षमता आप लोगों में नहीं, खाली दही मतते जाओ है? लेकिन गोपियां क्या करती थी, दही मथती थी, और कृष्ण क्या करते थे, मन को मथते थे, दोनों ही मथने का काम करते हैं। वो तो साक्षात मन मत मथने दिन लग गए, तब सब ने संकल्प कर लिया यदि पति होगा तो यही होगा, बस यदि पति होगा यही होगा, इससे अलावा और कोई दूसरा पति नहीं होगा। हर कन्या सौवरी ऋषि के हाथ पकड़कर कहने लगे कि हम मेरा अनुग्रह करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मुझे अनुग्रहित करो, अब तो कहां एक की कामना आ गए 50, सृष्टि क्या हुआ होगा उनकी, उनका आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक ही से आप लोग तंग हो गए हो, 50ों से क्या होता होगा, बोलो, भागवत लिखा है एक एक से 10-10 बच्चे हुए तो कितना बड़ा हुआ कुटुंब है, 50 × 10 है, 10 को 50 से गुणा करो, 500, 5000 ले जी। अब वो 50 वो 5050 और खुद अपने 5051, इतना बड़ा कुटुंब के बीच में सौवरी ऋषि को रहना पड़ रहा है। योग की एक विशेषता है, भोगने के बाद योग शक्ति क्षय होता है। योग साधना के द्वारा जो शक्ति संचय किया हुआ होता है, वो शक्ति जब तक भोग में प्रयोग नहीं करोगे तब तक तो वो शक्ति संचित रहेगा, और जहां तुमने उस शक्ति का भोग में प्रयोग किया कि शक्ति क्षय होने लग जाएगा। ये देते हैं कर्मचित लोकक क्षीयते एवं एवा मूत्र पुण्यचित लोकक क्षीयते, क्योंकि योग भी तो तुम्हारे प्रयत्न से हुआ हुआ है, उसलिए उस योग का जहां तुमने भोग किया कर्मजन्य होने के कारण, योग भी तो कर्मजन्य है, योग विचारजन्य तो है ही नहीं, ज्ञानजन्य तो है ही नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए वो नाशवान है। अब तो इतना बड़ा कुटुंब को संभालते संभालते योग सिद्धि भी खत्म हो गई, तो अब क्या करोगे, रोने लग गए, छोड़े भागे, ऐसे भागे सौवर ऋषि वहां से, किसी को पता ही न चले, भाग गए जंगल में गए, तो वहां एक महात्मा बैठा हुआ था, क्या हुआ सौवर ऋषि, बोले महाराज मैं तो बुरा फंस गया। कैसे, बोले कहा 10,000 वर्ष पानी में समाधि लेकर निर्विकल्प समाधि में बैठा था, निकला पानी से बाहर तो ये झंझट, और एक की कामना की थी तो 50 आ गए, और 50 से 5000 हो गए, अब मैं तो समस्या में फंस गया महाराज, अब मैं क्या करूं। तब फिर महात्मा ने कहा, अरे सौवरे ऋषि तुमने शुरुआत ही गलत की। क्या महाराज, तुमने मन को नियंत्रण करके अष्टांग योग और हठ योग के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में गए, शिव योग नहीं किया, और यदि तुमने उस समय अपना मन शिव में लगा दिया होता तो आज तुमके सामने ये समस्या ना आती, तो उस समय तुम हट करने लग गए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने जो मन है वो शिव के चरण में अर्पण कर दो, वो होगा शिव योग। मन का और शिव का जब जोड़ होगा, योग होगा, उसका नाम शिव योग, उसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं हो सकता। तब उन्होंने पंचाक्षरी दीक्षा दी और वहीं अपने ध्यान किया, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने लग गए और सारे झंझट से मुक्ति मिली उनको, सौवरे ऋषि को। तो शंकराचार्य शायद उस प्रसंग को भी यहां स्मरण कर रहे हैं, उधर मांडव्य ऋषि का भी स्मरण किया, इधर सौवरे ऋषियों का भी ऋषि का भी स्मरण किया। गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृश्य करे जले वा वन्नवा बसतु बसते किम बद फलम। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, भयंकर गर्मी के समय में शरीर बिल्कुल नंगा करके पंचाग्नि तपस्या करते हैं और उसको योग कहा है। क्या कर रहे हो, बोले योग कर रहे हैं, हठ योग। कैसा है हठ योग, तो बोले 5 जगह अग्नि जलाकर बीच में नंगे बैठते हैं और अग्नि धधक रही है। अब ये भी योग करते, देखो ऐसे को भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत व्यंग किया है, कर्षयस्त शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतस। चित्त को हृदय को अर्पण न करके इस प्रकार के जो योग करता है वह वास्तव में जड़मती है, अचेतस है, वह भूतग्राम प्राणी समूह अज्ञानी, कर्षयंती शरीरस्थम उसी के शरीर में रहने वाले मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। किसके नाम पर, योग के नाम पर। ले जी हठ के नाम पर, वो ये नहीं करते समझते हैं कि योग का अर्थ होता है चित्त को लगाना, और चित्त को तो लगाएंगे नहीं, शरीर को जलाएंगे, शरीर का ही मान लो कि यही शरीर ही सब पाप का घर है, और समझते हैं कि शरीर ठीक हो जाएगा तो सब, अरे मन सारा पाप का घर तो मन है, हाँ सारा पाप का घर तो मन है भाई, और पाप शरीर में भी नहीं रहता, पाप तो फिर मन में ही रहता है, मर के जाओगे तो शरीर यहीं रहेगा कि नहीं, और मन तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं, तब पाप शरीर में रहता है तो तुम तो पाप मुक्त हो जाओगे है, तब जाओगे तो फिर पाप तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो मर गए तो सारे पाप खत्म, तो इसी तरह फिर मर गए तो पुण्य भी तो खत्म, पाप और पुण्य यदि शरीर में रहता है यदि मानेंगे तो मर के जाने वाला का शरीर तो यहीं जला देंगे, राख हो जाएगा चंदनवाड़ी में है, तब तुम्हारे पीछे जाएगा पाप और पुण्य, लेकिन जाता है कि नहीं, इसीलिए पाप पुण्य ये कर्म, कर्म का संस्कार वासना ये स्थूल शरीर में नहीं रहता, ये तुम्हारे हृदय में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, तो उसमें जो है वो भी साथ में चला गया, गया कि नहीं, उसमें जो है वो भी साथ में चला गया, तब उसी को अर्पण करो परमात्मा को। जले वा वन्नवा वसतु वसते किं बद फलम, ये भक्ति का प्रसंग है इसीलिए बता देना बहुत जरूरी हो, महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, कोई अब बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, महात्मा थे, उन महात्मा के दो चेले थे, एक हठ योगी दूसरा परम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त था, एक हठ योगी था, हठ योगी ने तो यह निश्चय कर लिया कि मैं कठोर से कठोर साधना करूं और जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन कर लूं, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान का जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूं, उसने यह निश्चय कर लिया, बस पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया, हठ योगी बैठ गया, केवल एक कौपिन धारण की और पांच जगह आग लगाई बीच में बैठा, वो भी गर्मी के महीने हैं, मई जून के महीने में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, अब आजकल तो अहमदाबाद में भी वैसे ही होता है, नहीं बहुत है होता है, 45-47 तक जाता है अहमदाबाद में भी टेम्परेचर, कितना गर्मी होता है जहां 45-50 तक टेम्परेचर जावे, ऐसी जगह भी फिर आग जलाकर बीच में बैठे, कम कठिन है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो, बंबई वाले तो यहां तो कुछ भी नहीं है टेम्परेचर, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस के टेम्परेचर के सामने, 47-48 आगरा देख लो, मथुरा वृंदावन, यहां तो कभी भी शायद 35-36 से ऊपर नहीं जाता है, जाता है बंबई है 40 पहुंचने के तो कल्पना ही मत करो, तो यही भी सब हो, बहुत गर्मी छे, बहुत गर्मी छे बोलते हैं, और तुम पंचाग्नि तपोगे, उसने पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया, किसलिए बोले जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन करूं, और दूसरा सा भगवान का भक्त, वो तो भक्ति भजन शुरू कर दिया, को भजन हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम, बस लग गया कीर्तन में लग गया। कहते एक दिन नारद जी घूमते हुए पहुंच के, कहानी सुना है कई बार तुम लोगों ने, प्रासंगिक है मैं फिर भी सुना देता हूं, तो कहते नारद जी मिल गए उस हठ योगी के पास, नारद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना कठोर तो ये क्या कर रहा है, आग जलाकर उसके बीच में बैठा है। बोले मैं हठ योग कर रहा हूं, पंचाग्नि ताप रहा हूं। नारद जी पूछा कि क्यों? बोले जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करना है, इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं। अच्छा आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। तो आप कहां जाने वाले? बोले वैकुंठ जा रहा हूं सीधे ही। तो आप सीधे ही वैकुंठ जा सकते? बोले हां। कैसे? बोले भगवान ने हमको एक अलग स्पेशल शरीर दिया है और उनके दिए हुए शरीर से हम सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान का दिया हुआ जो शरीर था उस शरीर से सीधे वैकुंठ जा सकते हैं कौन? नारद जी। वीजा लेने नहीं पड़ता उस शरीर में। नारद जी अमेरिका जा सकते हैं उस शरीर से, वीजा लेना नहीं पड़ेगा। सच बात कह रहा हूं। तो फिर नरक जा सकते हैं कि नहीं? वीजा लेना पड़ेगा नरक के लिए है? अरे भाई नरक में भगवान है कि नहीं? यदि भगवान नरक में रह सकते हैं तो नारद जी को भगवान को दर्शन करने नरक जाने में क्या आपत्ति? सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, इसलिए नारद जी सब जगह जा सकते हैं। और नरक जाने के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म नहीं होगा और न जाए वो बात अलग चीज है, लेकिन उनको कोई

0: की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्यों? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन हो, इसलिए मैंने सब चिंतन छोड़कर कीर्तन करना शुरू किया। तो आप कौन? बोले नारद। कहां जा रहे हैं? वैकुंठ। भगवान के यहां। अच्छा, तो उनको भी हमारी बात भी कह देना भाई, आपका भक्त इस तरह आपके लिए, भगवान आपके लिए भजन कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाने वाले हैं, पूछ लेना। बोले ठीक है, पूछ लेते हैं। नारद जी पहुंचे, सारा हाल खबर विश्व का बताया। तो कहा कि महाराज आपको पता है? भगवान ने कहा क्या बेटा? बोले मर्त्यलोक में मैं आते समय दो आदमी आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं। एक तो बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है, पंचाग्नि ताप रहा है। हमने कहा ये क्यों कर रहा है? तो बोले आपके दर्शन करने की इच्छा से। तो आप बता दीजिए तो उसको दर्शन देने के लिए आप कब जाने वाले हैं, बता दे, क्योंकि हमको लौट के जाएंगे तो फिर उसको बताना है आपका रिपोर्ट। तब दूसरा, जो आपके दर्शन के लिए भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाएंगे, बता दो। तो भगवान ने कहा, कहते हैं नारद जी को, वो जो पंचाग्नि तप रहा है ना, उसको जाके कह देना इसी तरह पांच जन्म तक। कब तक? पांच जन्म तक पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, फिर पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे। पांच जन्म जब पूरा होगा तब मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा, बोल देना।
1: अपॉन हियरिंग दिस अनाउंसमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली एट shaivam@shaivam.org। दिस रेडियो सर्विस हैज बीन मूव टू ए न्यू एड्रेस एंड द सर्विस एट दिस एड्रेस विल बी डिसकंटिन्यूड शॉर्टली। Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Divine Discourse. In this, you are about to listen Highlights of Upanishads. The title is Chandogya Upanishad, presented by Swami Jyotirmayananda. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: We are recording from the ashram of our revered Guru Pujayatman Sri Swami Jyotirmayananda in Miami, Florida. Swamiji continues with the lecture series on the Upanishads, and Swamiji will lecture on Chandogya Upanishad, class number 29. And now Pujayatman Sri Swami Jyotirmayananda.
4: Om Apyayantu Mamangani Vak Pranah Chakshu Shotramatho Balamindriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamast Anirakaranam Mestu Tadatmani Nirate Ye Upanishatsu Dharma Te Mayi Santu Te Mayi Santu Om Shanti.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Hari Om. Pujya Maharaj ke punya charanon mein vandan. Kuch ghatna aisi hoti hai ki hame hamesha yaad rehti hai. और उसी समय कोई ऐसे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो ऐसे संत हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। महाराज जी ने अगर ध्यान हो तो बहुत ही कम समय के लिए 16 फरवरी को महाराज जी बता रहे थे 6-7 दिन के लिए। और तैतरीय उपनिषद के मंगलाचरण की समझो एक विधि की थी प्रेमपुरी के लिए और उसी मंगलाचरण की कृपा है कि महाराज जी फिर से यहां बता रहे हैं। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वागत करते हैं। वही तैतरीय उपनिषद महाराज जी द्वारा हमें प्रवचन के रूप से सुनेंगे हम। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन। हरि ओम।
3: भक्त शक्ति संहिता वासल में माताओ स्नेहिनो आप सर्व बंधुओ, तैतरीय उपनिषद पर मंगलाचरण को लेकर चर्चा की थी और शिक्षा अध्याय को लेकर के थोड़ी चर्चा हुई थी। उसके पश्चात पुनः जो है प्रतिज्ञात जो है मंगलाचरण यहां शास्त्रकार कर रहे हैं उसके अंतर्गत चर्चा की जा रही है। उपासना विषयक पहले चर्चा कर रहे हैं और उस उपासना का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो यहां पर उपास्य रूप से ओंकार को संकेत कर रहे हैं और उस ओंकार की उपासना को लेकर के ही पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्यों को लेकर के प्रार्थना कर रहा है ऋषि और उसमें संकेत कर रहा है यश छंदसा मृषभो विश्वरूप। पहले ही ऋषि ने कहा यह छंदसाम ऋषभ, संकेत किया छंद माने वेद, जो छंदों में वेदों में कैसा है तो ऋषभ। अब ऋषभ शब्द के अर्थ श्रेष्ठ भी है और कहीं कहीं ऋष धातु से लेकर के ऋषभ शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक ज्ञान रूप भी लिया जाता है। तो यहां पर प्रसंगानुसार ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। तो संकेत करते हैं यह छंदसाम ऋषभ, जो वेदों में क्या है श्रेष्ठ है, जो वेदों में श्रेष्ठ है और कैसा है तो कहा विश्वरूप, जो वेदों में श्रेष्ठ है और विश्वरूप है माने सर्वरूप है। विश्वरूप का मतलब क्या है कहा जो सर्वरूप, तो जो वेदों में श्रेष्ठ और सर्वरूप है ऐसे उस ओम की तरफ संकेत करते हुए ऋषि कर संकेत कर रहा है। तो ऐसे उस ओंकार को उपास्य बनाने के लिए कहा कि जो वेदों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वरूप है। और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया छंदोभ्यो अधि अमृतात संबभूव, और क्या कहा कहा जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा उन वेदों से क्या है कहने लगे अधि अमृतात, जो अमृत है या जो अमृतत्व है, ऐसे उस अमृतत्व का हेतुभूत जो अमृत है उस अमृतत्व का हेतुभूत जो, उस हेतुभूत का ही जो अधिष्ठान है, अधिउपसर्ग को लेकर के उसका जो अधिष्ठान है, ऐसे उस अधिष्ठान की जो है उपासना के लिए है, तो क्या संकेत करते हैं, कहा कि वह अमृतत्व का हेतुभूत जो है, ऐसे उस ओंकार की हम उपासना के लिए, यहां पर ऋषि भी संकेत करता है संभव अर्थात उस, ये सब संकेत किया और फिर प्रार्थना करते हैं, समेन्द्रो मेधयास पड़ोतु, फिर उसी के स इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यहां देवता विषयक मात्र नहीं, इंद्र शब्द का अर्थ है यहां ईश्वर रूप है, जो संकेत करते हैं इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते, तो वहां पर संकेत क्या किया, माया के द्वारा उस इंद्र ने सारे संसार का निर्माण किया, तो वहां इंद्र शब्द से केवल जो है स्वार्गिक इंद्र है उसको ग्रहण नहीं किया, वहां पर इंद्र शब्द से लिया गया कि माया के द्वारा सृष्टि करने वाला कौन, तो ईश्वर, तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं स इंद्र, मां अर्थात मां मेधयास प्रणोतु, मेधा के द्वारा, मेधा से इस प्रणोतु माने हमें युक्त करे, अर्थात मेधावान बनाए या हमारे अंदर वह सामर्थ्य प्रदान करे, जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करके और उस अमृत के जो अधिष्ठान है और उसका हेतुभूत जो है उसकी उपासना करके हम जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर सकें, इसलिए जो है ऐसे उस बल का हमें जो है या ऐसी उस सामर्थ्य का जो है हमें प्रदान करे या वो सामर्थ्य वाला हमें बनाए, ऐसा यहां संकेत करते हैं और आगे संकेत किया फिर अमृतस्य देव धारणो भूयाशम, है ना, तो वो जो देव है वो क्या करे, उस अमृत का धारण कराने वाला मैं हो जाऊं, ऐसा जो है मुझे बल दे, तो उस अमृत को धारण कराने वाला मुझे बनाए या मैं ऐसा हो जाऊं, तो ये संकेत किया तो उस देव से ही प्रार्थना करते हुए, और वो देव क्या है, तो यहां ओंकार को ही उपास रूप से ग्रहण कर रहे, ये संकेत कर रहे, यहां भूमिका बना रहे, और फिर ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया, शरीरम में विचर्षणम, मेरे शरीर को वो कैसा बनाए, तो विचक्षण बनाए, अर्थात उस सामर्थ्य वाला बनाए, शरीर भी क्या है, तो कहा एक साधन है, और साधन किसका है, तो कहने लगे शरीर जो है साधन संसार के पदार्थों का भी है, और संसार के पदार्थ जो है वो शरीर के लिए साधन है, लेकिन उन साधनों से युक्त होता हुआ शरीर रूपी साधन किसके लिए है, तो वो संकेत करते हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए, उसका जो है शरीर का जो है वास्तविक साध्य क्या है, तो कहने लगे पुरुषार्थ, संसार के पदार्थ पशु आदि धन आदि जो कुछ भी है वो शरीर के साध्य नहीं, यहां संकेत करते वो शरीर के क्या है, वो शरीर के साधन है, और शरीर भी स्वयं में साधन है, शरीर साध्य भी है, किसके लिए साध्य है, तो कहने लगे संसार के पद पदार्थों के लिए तो वो साध्य हो गया, उस शरीर के लिए वो सब साधन है, लेकिन शरीर स्वयं में भी साधन है, तो साधन जब शरीर है तब उसका साध्य क्या है, तो वहां सीधे अर्थ में कह देते पुरुषार्थ ही उसका क्या है, का साध्य है, और उसका शरीर साधन है, तो शरीर जो है शरीर रूपी साधन किसके लिए है, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए, अब पुरुषार्थ शब्द से चार पुरुषार्थों को हम लेते हैं, लेकिन यहां पर श्रेयता की दृष्टि से संकेत कर दिया जाता है कि अन्य साधन तो उसके संसार के पद पदार्थों के अंतर्गत लोक विशेष को लेकर के आ गए, लेकिन वास्तविक उसका साध्य क्या है, तो मोक्ष ही उसका साध्य, अमृत ही उसका साध्य। और उस अमृत का हेतुभूत क्या है? तो उसके लिए हेतुभूत जब कहेंगे तो ज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के लिए ये शरीर है। अब ये शरीर जो है तो वो हमारा शरीर रूपी साधन कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए कहने लगे कि शरीर रूपी जो साधन है वो भी सामर्थ्य युक्त हो, वो भी सामर्थ्य वाला हो। तो इसलिए कहा कि शरीरम में विचर्षणम, हमारे शरीर के अंतर्गत भी वो विलक्षणता जो साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो, अर्थात सामर्थ्य को प्राप्त हो या बल को प्राप्त हो, तो ऐसा बल जो है मेरे शरीर को भी प्रदान करें। शारीरिक दृष्टि से भी संकेत किया और जिह्वा में मदमत्तमा, फिर एक एक अवयव को लेकर कहने लगे, मेरी जिह्वा कैसी हो जाए? तो केवल मधु युक्त नहीं, मीठी नहीं हो जाए, क्या हो जाए? मधुमत्तमा, माने जो श्रेष्ठ मधुरता है उस मधुरता वाली हो जाए। तो ये सब सामान्य रूप से संकेत कर रहे। ऐसे ही आगे कह दिया कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, और कानों से जो है मैं बहुत सुनने वाला हो जाऊं, कानों से क्या हूं, बहुत सुनने वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से कहते हुए फिर आगे कहा ब्रह्मणः कोशोसी, क्या कहा? ब्रह्मणः कोशोसी माने ब्रह्मणः कोशा असी, यह जो है कौन, जिसकी हम उपासना करने जा रहे, जिसे हम अपना उपास्य बना रहे हैं, वह उपास्य कैसा है? तो कहने लगे वो ब्रह्म का कोश है, वो उस अमृत का कोश है। कोश माने कोश को कह दो तो एक आवरण, क्या कोश माने क्या है? आवरण, या उस ब्रह्म के लिए रहने का स्थल विशेष, ऐसा संकेत। यद्यपि ब्रह्म वहां रहता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रतीक उपासना को लेकर के हम लोग जिस भाषा में रहते हैं और जिस भाषा के व्यवहार से समझते हैं उसी को समझाने के लिए यहां कोश शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वो ब्रह्म का कोश है, और उसका भाष्य में संकेत किया कि जैसे तलवार का कोश क्या है, उसका म्यान, ऐसे ही यहां पर जो है ओंकार जो है वो क्या है? ब्रह्म का कोश। क्यों? ब्रह्म में वास्तव में कोश आदि नहीं, लेकिन ये ओंकार जो है ब्रह्म का अत्यंत समीपी है। क्या है? ब्रह्म का अत्यंत, यद्यपि ओंकार को सब कुछ कहा, ओंकार है इति सर्वम, ओंकार जो है वही सब कुछ है, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म ऐसा भी कह दिया, लेकिन ये जो सारा वर्ण है वो किस लिए है? तो ओंकार को हम उपास्य बना रहे, और ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्म के प्रतीक रूप से करते, इसलिए ब्रह्म के प्रतीक रूप से उपासना करने के कारण, और वो प्रतीकता जैसे अन्य प्रतीकताएं हैं वैसा नहीं, वो श्रेष्ठ प्रतीकता है, वो ब्रह्म की अत्यंत समीपी जो है प्रतीकता है। इसलिए ओंकार को ब्रह्म का अत्यंत समीपी होने के कारण निर्दिष्टो ही ब्रह्म ऐसा संकेत किया, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है वो ब्रह्म का अत्यंत समीपी, जैसे वहां जो है को शब्द से भी कह दिया तो तलवार का अत्यंत समीपी कौन है? काम्या उसमें रहती है। अब वो इस प्रकार से वहां पर रहती है, लेकिन कार्य करने के समय तक कोष से बाहर आ जाती। तो इसे संकेत यहां कर रहे हैं कि ब्रह्मणा कोशोसी, यह जो ओम है वही क्या है? ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का अत्यंत समीपी है। और ऐसा संकेत करते हुए फिर कहा कि कोशोसी मेधया पीत, अब फिर संकेत किया मेधया, मेधा के द्वारा, अब ऐसे उस ओंकार को भी प्रतीक को भी हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। तब कहने लगे क्यों समर्थ नहीं होते? तो मेधया पीत, क्योंकि मेधा के द्वारा, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति विशेष का नाम ही है क्या? मेधा। तो अब उस मेधा के द्वारा पीता मने वह छिपा हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उस मेधा ने ही उसको छिपा दिया और मेधा जो है उसको देखने में समर्थ इसलिए नहीं हो। तो मेधा पीतः वो बुद्धियों से ढक गया, सीधे अर्थ में कह दें तो वो बुद्धियों से ढक गया। श्रुतम मेघोपाय, और आगे संकेत किया मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो उसकी क्या करो तो रक्षा करो। ये सब जो है सामान्य अर्थ को लेकर के यहां संकेत किया। आगे संकेत किया आवहंती वितनवाना, माने मेरे लिए आवाहन करने वाली, बुलाने वाली, और जो है वितनवाना विस्तार करने वाली है। तो इस प्रकार से जो है उपासना करते हुए अपने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए जो है मने इन वलों आदियों को लाने वाली और उस वल आदि का विस्तार करने वाली। तो श्री आदि के लिए भी संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य रूप से इस मंगलाचरण के अंतर्गत चर्चा की। अब ये वल की बात जो कही, देखो नियम ये है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी एक मंत्र आता प्रारंभ में ही, इसे तोर्जे त्वा वायवस्था त्वा देवो सवितः वा प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्याद्वयम् माग्नः इन्द्राय। और उसके बाद फिर इस प्रकार से चर्चा करते हुए आगे चर्चा की। अब यहां पर संकेत किया गया, तो पहले वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये कहा मने तोर से त्वा ऋषे, वहां भी संकेत किया मने उस श्रेष्ठ अन्न आदि को हमें प्राप्त करो कराओ। और उस अन्न आदि को जब हम प्राप्त कर लें तो कहीं उसके बाद कहा ऊर्जे, मने हमें ऊर्जा बल प्राप्त कराओ। और बल प्राप्त हो जाए तब संकेत किया उस बल से संपन्न होकर के, क्योंकि वह देवता कैसा है।

चर्चा भी प्रार्थना करेंगे। माने अन्न तो हमने ग्रहण कर लिया, या जो हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं, अन्न का मतलब अतिथि अन्नम, जो जिसके ग्रहण करने से शरीर पुष्टि को प्राप्त हो, वही यहां पर अन्न शब्द सी। तो अब अन्न हमने प्राप्त कर लिया या शरीर के साधनों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अन्न तो हमें मिल जाए लेकिन कभी कभी स्वाद से थोड़ा अधिक खा जाते तो क्या हो जाता, तो अजीर्ण हो जाता, और अजीर्ण हो जाता है तो अन्न खाया किस लिए था, इसलिए खाया था कि हमें बल की प्राप्ति हो। लेकिन जब उसने अजीर्णता पैदा कर दी तो बल न होने के अपेक्षा बल कम और हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर संकेत किया गया, इसलिए कहा कि अन्न को इतना ही से कहने से काम चल जाता, फिर आगे ऊजे शब्द की बल प्राप्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, इसलिए कि अन्न को हम साधनों को एक उचित मात्रा में एक मर्यादित रूप से ग्रहण करें और ग्रहण करके उससे बल की प्राप्ति करें, और वो बल जब हमें मिल जाए तो बल को देने वाला भी कौन है। तो इसलिए संकेत कर दिया कि वायु शब्द का त्वा वायुस्थ, वायु रूप भी तुम, क्यों जानते हैं आप सब लोग, जितना भी शरीर के अंतर्गत आप बलात्मक कार्य करते हो वो कब होता है, कोई भी क्रिया करते हो तो कब होती है, तो कहने लगे शरीर में बल होता, लेकिन वो बल भी काम कब करता, वो बल है कौन, उस बल को भी प्रेरित करने वाला कौन है, हम वाणी बोल रहे हैं तो बोलना रूप जो बल है वो अभी कब है। तो यदि वायु नहीं होगी तो ये वाणी का प्रस्फुटन नहीं होगा, वायु नहीं होगी तो हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत, और यहां तक कह दिया है रसो वही सहज श्रुति आई, तो ये यदि हेस आकाशो न स्यात् कोवान्यात् कोवा प्राण्यात्, यदि ये आकाश नहीं होता, वहां संकेत किया तो है अपहनन आदि क्रिया, प्राणन आदि क्रिया कौन करता, और ये क्रिया यदि नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता, संकेत किया। तो इसलिए संकेत क्या किया, इसलिए तुमेव वायु है क्या है प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म है ऐसा नहीं किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म शब्द से कहा, मन इंद्रियों के द्वारा सामर्थ्य देने वाला, इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ब्रह्म कौन है, तो वायु है, तो ऐसा संकेत। तो इसलिए तो वायु क्या है, इसलिए कहा त्वा देवो वायवस्था, तुम क्या हो वायु रूप हो, तो वायु वह सारा बल देने वाला है, वायु बल की प्रेरणा करने वाला है, उस वायु के बगैर ये कोई क्रिया संभव नहीं हो सकती, ऐसा वहां संकेत किया। और इतना संकेत ही नहीं, साथ में जो है कहा वायु भी है, और उसके बाद कहा कहने की त्वा देवो सवितुर सविता है, सविता शब्द का प्रयोग किया, सविता शब्द का अर्थ क्या है, तो मन सूर्य और प्रसव करने वाला, ऐसा भी संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देव से प्रार्थना करते हैं और अन्न को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करके बल की प्राप्ति हो, और बल की प्राप्ति हो तो उस बल का प्रयोग क्या होना चाहिए, है ना, तो शक्ति परेशम परपीडनाय, हमें यदि शक्ति मिली है बल मिला है तो क्या करें, दूसरों को पीड़ा दें, कहा नहीं, साधु और खल के लक्षणों में जो बतला दिया स्वास्थान में, तो कहने लगे नहीं वो किस लिए है, दूसरों की रक्षा करने के लिए या अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करने, तो बल प्राप्त करें और उस बल को प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ये संकेत किया। तब वहां कहा वो कैसे होगा, तो संकेत क्रम से दिया, एक साथ तो बल प्राप्त नहीं होगा, तब कहा श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्याय धुम, माने कर्म भी हैं, तो एक तो आप गीता में सुनते हो कर्म विकर्म और अकर्म, अब यहां पर जो शब्द आया कर्म को लिया, कर्म की भी गतियां फिर विभाजन कर दी, कर्म में भी भेद कर दिया, कर्म फिर श्रेष्ठ तर कर्म और फिर श्रेष्ठ तम कर्म, तो वहां कर्म के लिए नहीं कहा, अब इतना कह देने से जहां पर ये कर्म अकर्म विकर्म और फिर कर्म में कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म, इसमें काम्य निषिद्ध तो पहले ही से निवृत्त हो गई, इतना विधान करने से काम्य और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वर्जन पहले ही से हो गया, और कर्म जो है अब वो कर्म को लेकर के संकेत की, तो श्रेष्ठतर कर्म के लिए नहीं कहा, श्रेष्ठतम कर्म

नमः स्वस्तिदाय नमः सुधाम्ने नमः धात्रीधाम्ने नमः धामकराय नमः सवर्गाय नमः सर्वगोचराय नमः

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः।

ब्राह्मण्याय नमः, ब्राह्मणप्रियाय नमः, देवप्रियाय नमः, देवनाथाय नमः, दैवज्ञाय नमः, देवचिन्तकाय नमः, विषमाक्षाय नमः, विशालाक्षाय नमः, वृषदाय नमः, वृषवर्धन

सर्वर्तु परिवर्तकाय नमः सप्तजिह्वाय नमः सहस्रार्चिषे नमः स्निग्धाय नमः प्रकृतिदक्षिणाय नमः भूतभव्यभव

कार्यकोविदाय नमः, वेद्याय नमः, वैद्याय नमः, वियद्गोप्त्रे नमः, सप्तावरमुनीश्वराय नमः, अनुत्तमाय नमः, दुराधर्षाय नमः, मधुराय नमः।

भगवत भक्तजन, सद्गुरु एक श्रद्धा के पात्र है। आचार्य शंकर गुरु मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना अंत्य योनि को प्राप्त किया हो। जिनकी चेतना उस अद्वैत अनुभव में, अनुभूति में स्थिर है, जिन्होंने वो शक्ति को आविष्कार किया, साक्षात्कार किए, जो एक अद्वितीय चैतन्य शक्ति संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, दृश्य जगत दृष्टा जगत में वही सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता का ही संपूर्ण विलास यह संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। केवल उतना ही नहीं, इस वेष्टि शरीर में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस अनुभव करता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के द्वारा जो विषयों को अनुभव करने वाला, जिसकी उपस्थिति से यह संपूर्ण भोग्य भोग एवं भोक्ता विराजमान है, सत्तामान है, केवल जागृत में ही नहीं, वही चैतन्य शक्ति विशिष्ट स्वप्न अवस्था में भी विराजमान है, जागृत है। सभी इंद्रियों उपकरण सो जाने पर भी वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो जागृत अवस्था में ही है। जब स्वप्न अवस्था से साधक उस सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां जाकर के मन भी अपने कारण में लीन हो जाता है, वहां पर भी बाह्य दृष्टि से मनुष्य कुछ नहीं पता, ऐसा अनुभव करने पर भी कुछ नहीं पता, इस बोध को जो जानता है, वो जो चित सत्ता है, वो जो चैतन्य सत्ता है, जिनकी चेतना मन बुद्धि अंतःकरण उस चैतन्य में प्रदीप्त है, वो चाहे क्यों हमारे चंडाल हो, अंत्य योनि क्यों ना हो। आचार्य शंकर कह रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए भगवत भक्तजन इस संसार में आए। संसार में जब आए तब गर्भ उपनिषद को जब हम देखते हैं, बड़ा वेदना और प्रार्थना करते हैं ये जीव कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे और संसार में जाना नहीं है, इस संसार से इस बार के लिए हमें निष्कृति दे दो। क्या प्रार्थना आप करते हैं? गर्भ मुनि उपनिषद को पढ़ने पर लगता कि यही प्रार्थना हमने किया, और भगवान से हाथ जोड़ करके उपनिषद के ऋषि उस जीव की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। वही मैं गिरगिराता रहा कि इस बार के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे इस संसार में जाना नहीं है। परंतु गहना कर्मणो गति, कर्म के गति गहन है
और उस कर्म के परवश होकर के आना पड़ा इस जीव को, आते समय यही जीव प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कर्म के कारण आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, हे देव ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो तुम्हें कभी न भूलो। ये मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है नारायण, कि ऐसी चेतना दो कि कभी भी हम आपको ना विस्मृत हो ना भूले। परंतु वही जीव, वही मैं उस प्रसव की वेदना से सब भूल गए, सब भूल गए, और उस अद्वितीय परमात्मा की ही व्यवस्था में आ गए, स्वकर्म से प्रेरित होकर के इस दृश्य जगत में आया। और इस जगत में आने के लिए बहुतों की कृपा, बहुतों की आशीर्वाद लेने पड़े, परंतु नारायण आगमन के पूर्व में जो प्रार्थना हमने किया, ईश्वर से जो निवेदन किया कि कभी भी ना भूलू तुम्हें, वो प्रार्थना किसी प्रेरित से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, व्याकुलता की, सत्यता की, जो हमने पूर्व पूर्व जन्मों में अनुभव किया, जो हमने संसार की सत्यता को जाना, जो हम सत्य और असत्य को विचार के द्वारा प्राप्त किया था, जानकर के उस अंतर्जामी हृदयेश्वर सर्वाधार उनसे प्रार्थना किया। परंतु संसार के ऐसे माया, ऐसे मोह हैं कि संसार में आते ही मैंने किया जो प्रार्थना, मैंने जो निवेदन किया कि कभी न भूलू, वही पहले भूले, उसी को पहले विस्मृत हुए, और इतनी दुर्गति इस संसार में प्राप्त किया, अनिष्ट को अपनाया, निष्ठ को छोड़ा, अनिष्ट को ही प्राप्त किया, और आज तक वही अनिष्ट को ही उठा रहना है। परंतु वो जगदीश्वर, जगदात्मा, हृदयेश्वर कभी कभी अपने अस्तित्व का प्रबोध कराते हैं कि मैं हूं और तुम्हारी ये प्रार्थना रही। परंतु विषयों की वासना से, भोगों की लिप्सा से, आकर्षण से उस अंतरात्मा की आवाज को, शब्द को हमने सुना नहीं और भोग में ही लिपट गए, लिप्त हो गए। परंतु ये जो चारों तरफ अंधकार है, यह जो अज्ञान है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे जो जीव अपने को आबद्ध समझ रखा है, इस मोह अंधकार से, अज्ञान से कौन हटाने वाला है? वो तो हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से तो हमने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमें इस अज्ञान से कौन उठाने वाले हैं? भगवद् भक्तजन, जिस दिन ऐसा प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हमने भोगों को अपनाया,
सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य समृद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया, परंतु इतने प्राप्ति के बावजूद भी मन के एक सुनापन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक हाहाकार अभी भी है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, उच्च मन के अंतस का जो भाव है, भोग ऐश्वर्य से भरा पूरा परिवार है, फिर भी कहीं न कहीं मैं अकेला हूं। भगवत भक्तजन, ये जो फीलिंग्स है अकेलापन का, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म जीवन के लिए। उस सुनापन, उस एकाकित्व, उस अकेलापन का अनुभव जो करता है, वो फिर ढूंढता है कि इस अकेलापन को मैं कैसे मिटाऊं।

गुरु अगर प्राप्त कर लिया तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और यही दृष्टि जो है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि जो आप हमारे सामने उपस्थित है खड़े हैं अंतवेशधारी सबसे निकृष्ट योनि को ग्रहण करके आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से क्यों ना आप अत्यंत निकृष्ट हो, परंतु हे देव आपके चेतना जो उस अद्वितीय चैतन्य में अनुभव है, जो एक अनुश्रुत परमात्मा शक्ति सर्वत्र विराजमान है, उस शक्ति में ही जिनकी बुद्धि और मन स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चाहे वो चांडाल हो अथवा द्विज श्रेष्ठ क्यों न हो, वो मेरे गुरु है। इसलिए अंतिम चरण के द्वितीय तृतीय चरण में आचार्य अपने भाव को लिखते हैं।

जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि उसमें दृढ़ हो गया है, अर्थात जिन्होंने उस शक्ति को अथवा उस शक्ति में चित्त को टिका पाए, वो मेरे गुरु है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए भगवत भक्तजन गुरु वो है, गुरु वे है जो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से हमें उस पार ले जा सकते हैं। कहां से आया कुछ भी पता नहीं है, मृत्यु के बाद कहां जाना है कुछ भी पता नहीं है, परंतु ऐसा जो एक अदृश्य अतीन्द्रिय यात्रा में आप निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, सोच करके घबराहट नहीं होती। अरे भाई, इस संसार में कहीं भी हम टूर में निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्था हम अपनाते हैं? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा सर्च करके एकदम पक्का करके जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई तकलीफ ना हो, यहां तक व्यवस्था करते हैं कि उस स्टेशन पर पहुंचने पर भी अगर कोई हमें लेने आवे तो बड़ा निश्चिंत कि हां कोई आ करके खड़ा है। इतनी व्यवस्था निश्चय खुद आपने किया, फिर भी आप बेचैन रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, जब तक मिलते नहीं, जब तक वहां पहुंचते नहीं, जब तक उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती। परंतु कभी भी हमने ये कोशिश किया कि इस जीवन के, मृत्यु के बाद भी मुझे चलना है, इस जीवन में हमने जो भी किया, जो भी संग्रह किया, जो भी अपनाया, जिनको भी ग्रहण किया, वो सब हमारे साथी है, परंतु एक समय क्यों ना अत्यंत आपन अपना क्यों ना हो, उसको छोड़कर के हमें जाना है। और इस मृत्यु के इस दीवार के बाद कौन है भाई? कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि बस इस शरीर को छोड़कर के, इस यात्रा को छोड़कर के आगे जो स्टेशन, जहां मेरा स्टेशन है, जिस जोली के लिए भी हमने टिकट बनाया है, वहां पर हमें कौन स्वागत करेगा?

0: अरे जगत में जब घूमने जाते हैं, जिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, अगर कोई अपना व्यक्ति हो, कोई होटल वाला ही क्यों ना गाड़ी लेकर आया हो, तो बड़ा निश्चिंत होते हैं। परंतु मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए कौन हमें स्वागत करने वाला कौन है? जहां इस जीवन में, इस वर्तमान में, इस लोक में तो हमने सारा इकट्ठा किया, संग्रह किया, अपनाया लोगों को, तो ये लोग भी तो एक सीमा तक, फिर उसके बाद ऐसा हमने व्यवस्था किया क्या, कोई आए ही, कोई लेख देखे? जब संसार में व्यवस्था करके भी हम यात्रा में निकलते हैं, स्टेशन पहुंचने के पहले तक, स्टेशन में ट्रेन इन कर रहे तब तक मन में जो है एक बेचैन, एक टेंशन, क्या पता वो आया कि नहीं, क्या पता वो मिलेगा कि नहीं, क्या पता कहां होगा। परंतु कभी भी हम ये नहीं कोशिश करते कि इतने आयु गए, इतने स्टेशन हमने अतिक्रमण किया, अब हमारा डेस्टिनी पहुंचने वाला है नारायण। अभी तक हमें बेचैनी नहीं है कि हमें कोई वहां लेने के लिए आए, हमने कोई व्यवस्था नहीं किया कि हमारे साथ हमें स्वागत करने के लिए, हमें लेने के लिए कोई आए। वो जो बताने वाला है कि भाई देखो यही संसार ही सब कुछ नहीं है, वो जो निश्चय देने वाला है कि बस मृत्यु के बाद तुम्हें ये व्यक्ति स्वागत करने के लिए आने वाले हैं। जैसे ही हम उस स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन रुकती है, फिर भी एक बेचैन होकर के चारों तरफ देखते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं कि कोई आया, कोई मेरा नेम लिख करके खड़ा तो नहीं है, देखते हैं बेचैन होकर के। और जब मिल जाता है कि हाँ अमुक मेहतास फैमिलीज वेलकम टू, फिर कितना आनंद होता है कि हाँ बस मैं हूं, मैं अपने आप मैं हूं। परंतु ये जो मैं हूं, ये जो मिलन, कितना सुखद है, सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा दुश्चिंता खत्म। और उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, वो हमारे लगेज लेते हैं, हम निकल जाते हैं। परंतु इस जीवन के जो संधिक्षण है, जहां उतर करके मुझे और यात्रा करनी है, ये जो स्टेशन आने वाला है, वहां हमें कौन मिलेगा? कोई हमारे लिए है, हमने कुछ व्यवस्था किया, वो व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था में एकमात्र सद्गुरु देते हैं। गुरु वो बता देते हैं कि तुम इस जीवन के यात्रा से निकलो तो तुम इस जीवन में ऐसा कुछ कर्म करो जो तुम्हें उस स्टेशन पर मृत्यु के बाद कालांत में वो सामने आकर के खड़े रहेंगे। और व्यक्ति जब उस सद्गुरु के चरण में अर्पण कर लेते हैं, इस अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और गुरु जब वो ज्ञान देते हैं कि है कोई और उसको तुम पुकारो, उससे परिचय प्राप्त करो, वही तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, तब व्यक्ति निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा लेते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, बड़े निश्चिंत होकर के वो जाते हैं।
1: अपॉन हियरिंग दिस अनाउंसमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली एट shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Pujya Mataji ke punit charanon mein vandan aap sab ki taraf se, संस्था की तरफ से और सभी यहाँ जो स्टाफ मेंबर है उन सब की तरफ से महाराज माता जी को वंदन करते हैं। आज त्रयोदशी है, गणपति की जो अभी धूम मची है उसके बीच जो माता जी का आगमन एक शुभ चिन्ह है और माता जी ने जो विषय भी लिया है शिव महिमा, माता जी हम 28 तारीख तक यह प्रवचन द्वारा माता जी द्वारा रहेगी, प्रातः प्रवचन द्वारा, सायं भी माता जी को सुनने का आयोजन किया गया है जिसकी जाहिरात माता जी के प्रवचन के बाद होगी। आप सब की तरफ से फिर से माता जी को वंदन करते हैं। हरिओम।
3: बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बा मैया की जय।

0: शिवाय नमः शिवाय च शिवतराज शिवतराज सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हर वर्ष की न्याही प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए प्रातःकाल की इस पावन बेला में नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी अपनी ही पवित्र प्रिय अभिन्न आत्मा, अब की बार भगवत चर्चा। गिरीश भाई के मेरे को फोन आते रहे कि माता जी आप बोलेंगे किस विषय में, और प्राय वो दिन था शायद सोमवार का और सावन का महीना, तो मैंने कह दिया शंकर जी पर बोलूंगी, शिव महिमा पर। बार बार पूछ रहे थे किस विषय पे बोलेंगी गिरीश भाई अपने चिमन भाई, तो विषय तो कुछ सोचा नहीं था, और फोन आ रहे थे मुझे इनको हमें जाहिरात करनी है, बतानी है, बताओ बताओ। और ये सच बात है कि मैं पूर्व कुछ निश्चित नहीं करती हूँ, ठीक है, उस समय जो प्रेरणा होगी जो मन में आएगा बोलना तो भगवान का ही नाम है, वाचा रमणम नाम अधेयम, ये तो एक नाम का भेद मात्र है, तत्वतः तो एक ही है, चाहे उसे शिव कहो चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे नारायण कहो, अनेक नाम है, अनेक नामों में अनेक रूपों में जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, व्यापक सनातन नित्य शुद्ध मुक्त परम तत्व, वह तो एक ही है, एक ही अविनाशी है, परंतु नाम रूप के द्वारा हमने उन्हें अलग अलग किया हुआ है। बोले इन नाम रूपों की बड़ी भारी महिमा है, नाम रूप से रचा हुआ ये संपूर्ण जगत है, जगत दो ही चीजें हैं, नाम और रूप, और हम लोगों को अच्छा अभ्यास है नाम रूप के सहारे अपने मन को चलाने का, मन को दौड़ाने का, तो इसीलिए मन संसार की ओर चलता है बोले नाम रूप के पीछे, और इस संसार से मन को हटाने का उपाय भी एक ही है, नाम रूप का आश्रय, भगवान के नाम और रूप का आश्रय लेकर के संसार को से अपने मन को बड़ी सहज रीति से निकाला जा सकता है, तो इसलिए भगवान के नाम का परम आश्रय लें, वो चाहे कोई भी नाम हो, तो उसमें जो आदि सनातन शिव है, मैंने कहा शिव महिमा पर बोलेंगे, शिव कहते हैं कल्याण को, शिव कहते हैं मंगल को, शिव का अर्थ होता है शुभ, जहां शिव नहीं वहां शुभ कैसा, शिव शुभ है, कल्याण है, मंगल है, और हम सब लोगों की चाह क्या है, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, और हम सबके लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए कल्याण की भावना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हो, तो सब सुखी किससे होंगे, सबका कल्याण किससे होगा, सबका मंगल किससे होगा, बोले मंगलम मंगलानाम, मंगलों में जो मंगल, और पावनम पावनानाम, जो पावन में पावनता प्रदान करे, मंगल में मंगलता प्रदान करे, और जो सर्वत्र शुभ प्रदान करे, उसी का नाम तो शिव होता है, शिव ब्रह्मा भी हैं, शिव विष्णु भी हैं, और शिव रुद्र भी हैं, और शिव शक्ति भी हैं, शिव गणेश भी हैं, शिव नारायण भी हैं, अर्थात शिव के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत अनंत नाम है, और शिव स्वरूप, ये शिव कौन, बोले ये शिव के रूप में विराजमान साक्षात आपके हृदय में जो विद्यमान नारायण है, आत्मा है, वही शिव है, इसलिए शिव कोई अन्यत्र नहीं, शिव तो निज स्वरूप है, इसीलिए तो आत्माष्टक आप बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं, शिवोहम शिवोहम, जो शिव स्वरूप है, जो शिव, इसीलिए कहा तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, उस शिव की महिमा, जो शिव सर्वव्यापक है, जो परिपूर्ण तत्व है वही शिव है नारायण। और शिव के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वेद हमारे पंचदेव उपासना का विधान बताते हैं, वेदों ने भगवान के दोनों स्वरूपों का निरूपण किया। भगवान सर्वगुण भी हैं और साकार भी हैं, परमात्मा निर्गुण भी है और निराकार भी है। निर्गुण निराकार को समझने के लिए, निर्गुण निराकार को समझने के लिए साकार है, यदि साकार न हो तो निराकार कैसे समझा जाए, और यदि निराकार न हो तो फिर ये सगुण साकार कैसे ये न हो। तो इसलिए वो निर्गुण भी होते हुए, निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं है, अर्थात जो निर्गुण जिनके गुण निरंतर अर्थात जिनके गुण अनंतर हैं, जिनके कौन सा गुण उनमें नहीं है, जो अनंत गुण, अनंत नाम नहीं है। कहने का अर्थ नहीं है कि उसका कोई नाम नहीं है, माने नाम उसके इतने अनंत हैं कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा रूप नहीं है, अर्थात वो अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण। ये गुण नाम क्रिया के साथ जैसे जैसे परमात्मा अपने अनंत रूपों में अव्यक्त परमात्मा व्यक्त करके प्रकट करते हैं, प्रकट कैसे करते हैं, बोले अनंत रामों से, अनंत रूपों से, परंतु उन अनंत नाम रूप में प्रथम चार पांच नाम और पांच रूप बड़े प्रधान हैं। इसको कहते हैं पंचोपासना, पंचदेव उपासना। उपासना वेद की जो पद्धति है उसमें दो, जो उपासना की पद्धति है उसमें पंचदेव उपासना सनातन काल से चली आ रही है। सनातन धर्म का मतलब क्या है, बोले जो सनातन काल से, वेदोक्त काल से चली आ रही है निरंतर पंचदेव उपासना, अनंत नामों में, अनंत रूप में पांच देवता, जो पांच में एक तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देव हैं, और गणेश जी हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं और भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ये पंच देव हैं। इन पंच देवों में सूर्य नारायण और भगवान नारायण, जिन्हें सत्य नारायण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, वद्री नारायण कहो, नर नारायण कहो, अर्थात ये तो एक ही है। सूर्य और नारायण एक है। ये पंचदेव में गणपति, भगवती दुर्गा और भगवान शिव, ये सदा शिव है, पराम्बा, ये भगवती शिवा है और उनके संग में नित्य विराजने वाले भगवान शिव हैं, अर्थात परमेश्वरी और परमेश्वर। परमेश्वरी पराम्बा के साथ जो भगवान शिव और उनके संग में सर्व विघ्न विनाशक भगवान गणेश, ये तीनों तो एक साथ हैं। प्राय आपने ये मूर्ति का दर्शन किया होगा, गौरी शंकर के संग गोद में विराजमान हैं, बोले कौन, भगवान श्री गणेश। तो गणेश तो गणनायक हैं, प्रथम देव हैं, और ये तीनों एक हैं। अर्थात बात क्या आई, बात ये आई कि नारायण और शिव, हरि और हर, वास्तव में क्या ये दो है, बोले नाना ये दो नहीं है, हरि हर की सनातन एकात्मता है, सनातन रूप से एक है, कभी नारायण तो कभी शिव, कभी शिव तो कभी नारायण, नारायण और शिव में कभी कोई भेद नहीं है। अर्थात शिव द्रोही मम दास कहावे, भगवान कहते हैं जो शिव का द्रोही है, शिव के साथ द्रोह करता है और मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो नर तो मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, वो कभी मेरा उपासक नहीं हो सकता। अर्थात ये दोनों एक है कहने के लिए अनेक हैं, दो हैं पर वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे रुपए का सिक्का एक होता है और उसके भाग दो होते हैं, दो भाग में दिखने वाला सिक्का एक है, उसी तरह से सनातन परिपूर्ण तत्व तो एक है। तत्व तो एक हो, एक हो हम द्वितीय एक होते हुए भी वो दो रूप में, अर्थात जैसे द्वितीय दो दूसरा नहीं है पर दूसरा न होने पर भी दूसरा अपने आप को कर लेता, प्रकट करता है इस रूप में, जिससे कि उन्हें सृष्टि की जगत की ये लीला खेल खेलना होता है भगवान शिव के संग। इसीलिए भगवती की जब पूजा की जाती है तो कहते हैं पार्वती परमेश्वर अर्थात कलो चंडी विनायका, कलो उमा महेश्वर, शक्ति महेश्वर, शक्ति के संग या तो महेश्वर की पूजा होगी और शक्ति के संग गणपति की पूजा होगी, गणेश जी और भगवती अंबिका की पूजा और अथवा शंकर और पार्वती की पूजा। तो ये दोनों रूप तीनों तो एक ही हैं, इसलिए ये पंच देव आराधना हम सबों के लिए नित्य मंगलकारी है, नित्य कल्याणकारी है और नित्य ही ये हम सब के लिए शुभ करने वाली है। इनमें से किसी को छोड़ करके कोई व्यक्ति सोचे कि हमें मंगल की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, सो संभव नहीं नारायण। इसलिए आइए इनमें से जो आदि सनातन भगवान सदा शिव है, शिव समान को दाता नहीं, शिव के समान भला और कौन दाता है। शिव की महिमा इतनी अपरंपार है, जिसको महिमन स्तोत्र में आप कहते हैं महिमना पारंते, महिमा जिसकी अपार है, जिसकी महिमा का कोई पारावार नहीं है। बोले ये महिमा, शिव महिमा हमें श्रवण करनी चाहिए। बोले कीर्ति का श्रवण करो, यश का श्रवण करो, श्रवण करने से हमारी उपासना में तीव्रता आती है। सुनना क्यों है, श्रवण क्यों करें? बोले जीवन में, उपासना में, भक्ति में तीव्रता लाने के लिए, उसमें गति लाने के लिए, गतिशील होनी चाहिए, गति देने के लिए हम अपनी उपासना, हम शिव भक्त हैं ऐसा मान करके अपने आप को ठहरा न ले वहीं पर, अर्थात हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में इतनी तीव्रता हो, गति हो कि हमारे अंदर आतुरता आए कि हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। उस तीव्रता को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तक तीव्रता नहीं होगी, बात तीव्रता लाने की है। ये महिमा इसलिए सुनाई जा रही है कि पंचदेव उपासना के मार्ग में जो हमारी स्थिरता आ गई है, क्योंकि तीव्रता नहीं होगी तो याद रखना प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार के निरंतर के श्रवण करने से, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक बार किसी के विषय में सुना जाता है तो सुनते सुनते सुनते उसमें हमारे भीतर आतुरता आती है कि जिसके लिए हम इतना सुन रहे हैं वो हमें मिले तो सही, परमात्मा मिले तो सही, शिव मिले तो सही, ऐसी आतुरता अपने भीतर लाने के लिए हमें उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। बोले पहली भक्ति है श्रवण, सुनने से तीव्रता आती है। तो क्या सुनना चाहिए? बोले भगवान की कीर्ति सुननी चाहिए, भगवान का यश सुनना चाहिए, भगवान की महिमा सुननी चाहिए। श्रवण करने के लिए महिमा है तो इस महिमा का श्रवण करें, शिव की महिमा का श्रवण करें। महिम न पारंते, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जिस महिमा को स्वयं शारदा माँ भी उनकी महिमा का गान करने लगे ना, आप लोग निरंतर बोलते हैं असतगिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतर वरु शाखा लेखनी पत्रम रुवि लिखित गिरित्वा शारदा सर्वकालम तदभी तब गुणानाम ईश पारम नयाति, कि स्वयं शारदा माँ भी तीनों कालों का पर्याप्त समय लेकर के और सब वनों की लेखनी बनाकर, सब समुद्रों की स्याही बनाकर, अखंड ब्रह्मांड का कागज बनाकर सर्व काल में लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकती हैं, इतनी अपरंपार महिमा है। पर फिर भी ऐसी अपरंपार महिमा श्रवण करते हुए एक जन्म नहीं अनंत जन्म हमारे लग जाए तो भी उनकी महिमा को हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे या गा पाएंगे ये कहना तो संभव नहीं, परंतु फिर भी जितना हमें समय मिले अधिकश्य अधिकम, ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को, अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुनना चाहिए। बोले सुनना क्या चाहिए, उनकी महिमा। महिमा कैसी है, ये शिव कैसे हैं, कि एक बार सृष्टि के कार्य में पूर्व समय की बात है कि शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी चले भगवान श्री हरि विष्णु के पास, और जब ब्रह्मा पहुंचे तो जाकर खड़े हो गए। खड़े हो गए तो सोचा उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा, सकल सृष्टि का नायक, सकल सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए मैं विधि हूँ, विधाता हूँ, तो मुझे नारायण को प्रणाम करना चाहिए, और जाति में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे इन्हें प्रणाम करना चाहिए। और श्री हरि नारायण सोचते हैं कि ये तो मेरा पुत्र है, क्योंकि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, पद्मनाभ, पद्म के नाभ से जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ये मेरे पुत्र हैं, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। कहा कि आकर खड़े हो गए, शिष्टाचार धर्म भी भूल गए कि इन्हें आकर के पुत्र को पिता के सन्मुख हाथ जोड़ करके शीश नवाकर पिता को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए, ये शिष्टाचार धर्म छोड़ दिया। भगवान श्री हरि को बुरा लगा और ब्रह्मा जी को लगा कि देखो मैं सारी सृष्टि को पैदा करने वाला हूँ और मैं सब कर, मेरा कार्य इतना महान है, मैं इनसे बड़ा हूँ, इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये मैं बड़ा का झगड़ा नारा, ये मैं कौन, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा और श्री हरि विष्णु कहे मैं बड़ा, इनमें भी बड़े को, बड़े छोटे को लेकर, और हम मनुष्यों में तो ये बात रहती है, मैं यदि न हो तो झगड़ा ही न हो। तो हर नारायण भी कहते हैं मैं बड़ा और ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, इन दोनों को बड़े बड़े लेकर के आपस में विवाद हो गया। और ये विवाद, नारायण कहे कि तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए और ब्रह्मा जी कहे कि नहीं तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप में प्रणीत हुआ। जब दोनों का युद्ध के रूप में प्रणीत हो गया ये विवाद तो ठीक उसी समय उन दोनों के बीच में, इस युद्ध के बीचों बीच एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसमें दिव्य ज्योति है, केवल ज्योति है, और यह अग्नि के समान एक दिव्य ज्योति स्तंभ जैसे ही प्रकट हुआ, उस ज्योति स्तंभ से आवाज आई। आवाज ये आई कि मेरे आदि और अंत का पता लगाओ।
1: ఇందులో మనకు మూడు జరుగుతాయి, ఒకటి ధ్యానము, రెండవది యోగము, మూడవది జపం, మూడు కలుస్తాయి. కానీ జపయోగం అనేది క్రమక్రమ స్థాయిల్లోకి మనం తీసుకువెళ్ళగలగాలి. ఆ మాటను ఇక్కడ అంటే ఈ వర్ణన ద్వారా మనకి ఆ యోగ విధానం వ్యాసదేవుడు చెప్పదలుచుకున్నాడు. అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో భక్తి, పూజ, ధ్యానము, తపస్సు అన్ని కలిసే ఉంటే విడివిడి కావు, ఇది గ్రహించవలసింది. పూజలు అక్కర్లేదండి, ధ్యానం చేస్తే చాలంటాడు ఒకడు, ఇంకోటి ఏవి అక్కర్లేదండి, యోగా చేస్తే చాలంటాడు ఇంకొకడు, అసలు ఏవి అక్కర్లేదంటాడు మరొకడు, ఆత్మజ్ఞానం విచారణ చేసుకుంటే చాలని. ఇన్ని మాటలు వినగానే అసలు అన్ని వదిలేయడం బెటర్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ అసలైన అహిందవ ధర్మంలో ఒకదానికొకటి సహకారి, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరే, ఒకదానికొకటి సహకారి, ఒకటి ఇంకో దాంట్లో అన్నీ పరిణతిని కలిగిస్తుంది. అందుకే ఇవన్నీ సాధకులకు చాలా పనికొస్తాయని నిన్నటి నుంచి మీకు సాధనాపరమైన అంశం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. కనుకనే నాలికని ఎప్పుడైతే పెదవికి తగిలించి, అది దంతాలకు తగిలించి పట్టాడో ఇంకా నాలిక చలించదు, అప్పుడు కేవలం మంత్రం మాత్రం ఉచ్చారణ జరుగుతుంది. ఎలాగో ఏది ఉచ్చరిస్తుందని చెప్పండి అక్కడ, అది మధ్యమంలోంచి పశ్యంతులకి తీసుకెళ్తుందండి. మీరు నోటితో అంటే వైఖరి, మనస్సులోనే అనడం మొదలెడితే అది మధ్యమం, అది క్రమంగా పశ్యంతులకు వెళ్ళి పరావాక్కులోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. పరావాక్కులోకి వెళ్ళగలిగితే ఇంకేం కావాలి, ఇది పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి యోగ ప్రక్రియ. కనుక జపం ద్వారా సిద్ధి ఎలా పొందవచ్చు అంటే ఇది. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నారెవరు, వ్యాఘ్రపాద మహర్షి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు. ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భూమధ్య స్థానంలో ఆయన ఆ శ్రీమూలనాథ స్వామిని ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్ట. కళ్యాణ లక్షణే దీర్ఘే నాసాగ్రేణ్యస్తలోచన, ఆ చూపు శుభంకరమైన దృష్టిట. ఈ మాట మనకి మహానుభావుడు శ్రీనాథ మహాకవి, భ్రూవికారములేని పొడవురెప్పలలోన ఘనదృష్టి నాసికాగ్రమున నిలిపి అని వర్ణించాడు. భ్రూవికారములేని పొడవురెప్పలు, అక్కడ కళ్యాణ దృష్టి అన్నారు. అంటే ముఖం కొందరు జపం చేస్తుంటే చోళ్ళెం పాపం ఇలా బిగించి చాలా అనీజీగా ఉంటారు, అలా ఉండకూడదండి, ముఖం ప్రసన్నంగా ఉండాలి. ఆ కళ్యాణము అంటే ఇది, ఆ కళ్యాణకరమైనటువంటి దృష్టితో అది నాసాగ్రణ్యస్తలోచన. నాసాగ్రణ్యస్తలోచన అంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ కూడా నాసాగ్ర దృష్టి అని ప్రత్యేకం చెప్పాడు. నాసాగ్ర దృష్టి అంటే భూమధ్యం. ఈ భూమధ్యమునందు ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్యస్వరూపాన్ని ధ్యానిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో ఇది పద్మాసనస్థస్య ముని పరమతేజస, అంటే పద్మాసనంలో ఒక చిన్న చిన్న భేదం ఉంది ఇప్పుడు వేసిన ఆసనంలో. అది ఆ వామపాదం పద్మాసన స్థితిలోనే క్రిందికి వచ్చి మూలాధారాన్ని జాగృతి చెందిస్తుంది. ఇది ఆ ప్రక్రియ. ఇలా కూర్చుని ధ్యాన స్థితిలో మొత్తం ఇప్పుడు భంగిమంతా మన కళ్ళ ముందుకు వచ్చింది కదా. ఆ స్థితిలో ఉండగా తస్యైవం వర్తమానస్య కదాచిత్ యోగ వైభవాత్. ఈ విధంగా ఉన్న స్థితిలో ఏనాటి యోగమో ఫలించి, ఈ మాట సరిగ్గా అర్థం కావాలంటే మన శ్రీనాథుడి భాషలోకి రావాలి. ప్రాచీనంబు పచేలిమంబయి అంటాడు ఆయన ఒక చోట. ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నట్ట విశ్వనాథ జ్యోతిర్లింగం ముందు, లింగం కనబడుతుంది కానీ ఆయన ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేస్తూ ఉండగా ప్రాచీనంబు పచేలిమంబయి, పూర్వజన్మ పుణ్యములు పండి ఒక్కసారి ఆయనకి శివుడు సాక్షాత్కరించాడు అని చూపిస్తున్నారు. అలా ఈయనకి భ్రూమధ్యంలో ఇంతవరకు ధ్యానిస్తున్నది దర్శనమైంది ఇక్కడ, అది దర్శనం లభించింది. అది కదాచిత్ ఒకనొక యోగ వైభవం వల్ల ఇది జరిగింది. అప్పుడు ఆవిరాశి ధృతి స్వచ్ఛే ప్రవృత్తి పారమేశ్వరి. నిజానికి చిదంబర రహస్య గ్రంథంలో శబ్దములన్నీ యోగ శబ్దములండి. కొంచెం సాధనా పథంలో ఉన్న వాళ్ళని హృదయం కుదుపుతాయి ఒక్కొక్క శబ్దం కూడా. ఇదేమిటి ప్రవృత్తి పారమేశ్వరి ఆవిరాసీత్ అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే పారమేశ్వరి ప్రవృత్తి ఆవిరాసీత్, పరమేశ్వర సంబంధమైన ప్రవృత్తి అతడికి కలిగింది అన్నారు ఇక్కడ. ప్రవృత్తి అంటే ప్రవర్తించుట అని అర్థం, తన చిత్తవృత్తి అన్నమాట. ప్రవృత్తి అంటే చిత్తవృత్తి పారమేశ్వరమైంది ఇప్పుడు, అంటే పరమేశ్వరమయమైంది ఆ చిత్తవృత్తి. ఆ మనస్సు ఇంకా ఈ లౌకిక స్పృహల్ని విడిచిపెట్టి ఆ పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం చెందింది. ఆ సమయంలో ఆ చెందిన వెంటనే అతనికి ఒక దృశ్యం కనబడింది. ఇది ధ్యానం కాదండి, దర్శనం. అది ఎలాంటిది అంటే అత్రాంతరే మహాదేవ శంకర శశిభూషణ సంహృత్య మోహం కృపయా సర్వానుగ్రహక శివ యోగ నిర్ధూత తమసాం మునీనాం భావితాత్మనాం దేవదారువనే దివ్యే దర్శయామాస తాండవం. కర్మ పండడం చేత, యజ్ఞములు పండడం చేత, యోగములు పండడం చేత దేవదారు వనంలో మునులకు శివుడు చూపించిన నాట్యం ఆయనకి దర్శనమిచ్చింది అక్కడ. ఆ ఆనంద తాండవ ఎక్కడ, దేవదారు వనంలో ఆయనకి శివుడు చేసిన నాట్యం కొంచెం కనబడి వెంటనే తదిదృక్షాసముద్భూతగాడు ఉత్కంఠాని పీడిత. ఆ నాట్యాన్ని ఇలా కనబడింది ఎప్పుడో ఇంకా చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్న దశలో ఒక్కసారి అంతర్ధానం అయిపోయింది. ఎంత కష్టపడి ఇన్నాళ్ళు తపస్సు చేస్తే ఆ దివ్యమైనటువంటి శ్రీమూలనాథస్వామి వద్ద ఇంత సాధన చేస్తే ఆ మహానుభావుడికి క్షణకాలం మెరుగు పెరిసినట్టు వెళ్ళిపోయిందండి. దీనికంటే

0: On hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Aana nishchit hai, abhi aaya nahi hai. Us dukkh ke rokne ke liye tum upaya karo. Isliye yog ka prayojan kya hai? दुख को रोकने का. कौन से दुख को? गत दुख को तो गया, उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं. वर्तमान में जो आ गया वो आ चुका है, इसलिए वो जाएगा. आ ही गया तो उसको भी रोकने का कोई प्रयत्न नहीं, कोई उपाय नहीं है. फिर किस दुख को रोकना चाहिए? बोले अनागतम. अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, आने की संभावना है. तो ये बात तुम जब जवान थे उस समय यह सोचा होता कि बढ़ोतरी में घुटने का दर्द होगा, बढ़ोतरी में कमर का दर्द भी होगा, इसलिए पहले ही जवानी में ही हमको सावधान रहना चाहिए. कम खाकर स्लिम बॉडी रखते तो घुटने का दर्द न होता. उस समय यदि तैयार किया होता तो आज घुटना दुखता न कमर दुखता. बोलो. और उस समय तो खाएगा, यही तो जवानी है, खाने का समय यही है. खाने का समय यही है, करते गए खाते गए, खाने का समय यही है. बुढ़ौती में तो खा नहीं पाएंगे, अभी तो खाने का है. और खाते गए, शरीर बढ़ता गया, अब क्या करोगे? चर्बी बढ़ती गई, अब क्या हो रहा है? हैं? अब दुख आ रहा है तो फिर रोते रहो, दुख आ रहा है. तो उस समय यदि ये सूत्र का ध्यान दिया होता, हेयम दुखम अनागतम, ये बुढ़ौती में अनेक प्रकार के रोग आएंगे, वे रोग को कैसे रोका जाए, अभी से तैयारी करो, उसी का नाम योग है. बस बुढ़ौती में करने का नाम नहीं है, पहले करने का नाम है योग. कष्ट आ जाने के बाद, समस्या आ जाने के बाद करने का नाम योग नहीं है. और आज जितने भी योग साधना करने वाले योग अभ्यास करने के लिए आते हैं, सब रोग से ग्रसित हुए हुए ही आते हैं। कौन आते हैं? रोग से ग्रसित हुए हुए आते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि रोग से ग्रसित हुए हुए को योग काम नहीं करता। योग किसको काम करता है? रोग से जो ग्रसित नहीं है वो योग करेगा तो आने वाले जो रोग हैं उससे वो बच सकता है। रोग आ ही गया तो बचने का कोई उपाय नहीं है? हमको क्या पता था, पहले हमने ख्याल ही नहीं रखा। ये शरीर में मधुमेह होगा, शुगर आ जाएगा, पहले हमको पता नहीं था है? मई महीने में हम हमेशा पहले मई महीना प्रेम कुटीर करते थे, एक महीना चर्च गेट, और जून यहां करते थे। ये बहुत सालों से चल रहा है, 200-2500 साल से। लेकिन अभी प्रेम कुटीर तो हमने छोड़ दिया, 12-14 साल ही हो चुका है, वहां नहीं जाते हैं। पहले प्रेम कुटीर पहले मई करते थे और जून यहां, गर्मी का सीजन हमारा बम्बई ही होता था। तो एक बार मई में जब हम प्रेम कुटीर गए तो बहुत गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी था। तो वहां एक बहन थी, बहुत सेवा करती, संतों की सेवा, केवल हमारी बात नहीं, जो कोई भी वहां कथा करने के लिए कथाकार महात्मा जाते थे वो पूरी सेवा निष्ठा से सेवा करती थी। तो उन्होंने क्या किया, महाराज बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, मैंने कहा गर्मी तो अच्छा, दूसरी बात यहां तो एसी था, वहां एसी भी नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, और गर्मी मई का महीना भयंकर गर्मी। तो वो क्या करती थी, सुबह ही सुबह मौसमी का जूस ला के दे दे। तो अब एक महीना हमको वहां रहना है, उन्होंने विचार किया कि महाराज जी को रोज एक महीना मौसमी का जूस पिलाएंगे। तो एक ही बार मौसमी खरीद के ले आई, बोरा का बोरा। नौकर को कहा एक बार ले आओ, एक महीना तक महाराज जी रहेंगे, उनको जूस पिलाना है। संयोग से वो जूस मौसमी थोड़ा खट्टा निकला है। अब रस निकाल के पिए तो एकदम खट्टा। अब क्या करने लगे कि ग्लूकोज डालकर, 3-4 चम्मच ग्लूकोज डालकर वो मौसमी के रोज पिलाना शुरू कर दिए। और फिर उनके जो लंदन में कोई थे संबंधी, वहां से चॉकलेट भेज दिया उसने स्वामी जी के लिए करके, लंदन से चॉकलेट आ गया इतना। और हम फिर चॉकलेट भी खाना शुरू कर दिए हैं, और ग्लूकोज डाल डाल के मौसमी पीने शुरू कर दिया, कोका कोला पीने शुरू कर दिए। बोलो अब क्या होगा, बोलो है? डाया भाई की बेटी तो आना निश्चित ही था, आ गई डाया भाई की बेटी। ये डाया भाई की बेटी के लिए कोई जवान व्यक्ति पसंद नहीं आता है, वो उसको तो बुढ़ा ही चाहिए है? कैसी है पता नहीं, वो डाया भाई की बेटी आ गई। अब हमको तो पता नहीं, आप खूब खाए आम, फिर मई महीने तो फिर आपूस आम, सुबह भी आम शाम को भी आम, सब चीज एक ही साथ पड़ा। अब हमने ख्याल ही नहीं रखा कि इसका ये रिएक्शन होगा, खाते गए। वहां के बाद जब यहां आए, यहां भी वही शुरू हो गया। ये तो भगवान की, भगवान शिव की क्या पता नहीं कहां से क्या प्रेरणा हुई कि हमारे प्रतिमा बहन आजकल नहीं आती है, बीमार हो गई, उसको बेटे ने अमेरिका से वो क्या बोलते हैं उसको, मशीन आता है ना, टच वन है? वन टच डायबिटीज चेक करने का, वन टच होता है ना, एक ही बार पिन करो फिर स्ट्रिप में, मशीन भेजा। तो उसने कहा बेटे ने मशीन भेज दिया स्वामी जी। हमने कहा कैसा दिखाओ, लेके आई, खोल के दिखाया। उसने कहा कि आपका टेस्ट करते हैं। तो ओपनिंग ही हमसे करना चाहती थी वो, आपसे ओपनिंग करें, ये भगवान शिव की कृपा थी भाई। जब उसने मशीन खोला, सेट किया पढ़ के, और लोई निकाला और उसमें लगाया, तो वो काउंटिंग शुरू हुआ। तो कितना हुआ था पता है तुम लोगों को? 393। अभी भी वो 393 वो याद है, बाई हार्ट है पहली बार। वो तो घबरा गए, स्वामी जी क्या हुआ? आपको तो शुगर बहुत भयंकर है। अरे भाई नहीं है भाई, हमारे को कोई शुगर शगर नहीं है, तो शायद इसको ऑपरेट कर नहीं पा रही है ठीक से। फिर उसने पढ़ा, इधर किया उधर किया, फिर दोबारा टच किया, फिर टेस्ट करते, फिर वही 393 94, एक पॉइंट और बढ़ गया उतने में। तो फिर डॉक्टर अतुल को कहा कि स्वामी जी को ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा किया, तो उन्हें फिर दूसरे दिन ब्लड ले गए और लेबोरेटरी टेस्ट किया तो 400 क्रॉस कर गया दूसरे दिन। तो हे भगवान, फिर तब से ब्रेक लग गया, हे हम दुख मनागतम। लेकिन वो आ ही गया था तो अब क्या करते, आ ही गया तो अब क्या करेंगे, भोगे रहो, लगे रहो, भोगे रहो। तो अभी तक वो उसने डायवे की बेटी ने तलाक नहीं लिया है, हाँ। मुझे लगता है वो लेगी भी नहीं, इतनी फैसिलिटी उसको मिल रहा है, क्या तलाक लेगी वो। खाने को फोकट में मिल रहा है, रहने को फोकट में मिल रहा है, पसीना बहाना नहीं है, हाँ? आराम से रह रही है, तो तलाक क्यों लेगी वो। शायद हम कहीं पसीना बहाना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, पैदल चलना शुरू कर दें, खेत फावड़ा चलाना शुरू कर दें, लकड़ी काटना शुरू करें, शरीर से खूब पसीना बहा दें, तो वो क्या सोचेगी, ये अब काम करने लग गया, इसके पास रहना ठीक नहीं है। शायद तब जा सकती है, लेकिन इतनी फैसिलिटी है तो अब कहां से जाएगी वो। रोज लोगों के घर खाना खाना है, एक ही भी नहीं है, हजार वेरायटी महाराज, कई नहीं, एक दिवस तो चाल से, तो खिलाने वालों के लिए एक दिवस है। आप क्या रोज आओ छो, तुम्हें साल में एक बार आओ छो, तो एक दिवस तो चाल से। अरे भाई तुम्हारे लिए एक दिन है, यहां तो रोज है, है? आज उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां, कल उसके यहां। तो अब ये डायवाइट की बेटी क्या तलाक लेगी, है? निश्चिंत बैठी है, बैठे रहो, हम भी कहते हैं बैठे रहो, है? चलो आज कहां गए हम लोग, बोलो। हाँ, ये देखो हठ योग क्या है, तो वह प्रारब्ध भी छूता नहीं, जब तक आप निर्विकल्प समाधि में रहेंगे आपका प्रारब्ध भी प्रतीक्षा करता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप निर्विकल्प समाधि में बैठे रहे तब तक प्रारब्ध आया गया तुमको पता ही नहीं चला। यदि तुमको पता नहीं चला तो प्रारब्ध सार्थक नहीं होगा। हाँ, ये प्रारब्ध कैसा है पता है, यदि तुमको किसी से अनबन हुई और उसको तुमने खूब गाली दी और तुम्हारे गाली को वो हंसते हुए सुनता रहा, तो तुमको ग्लानि होगी कि इतना गाली देने पर भी वो नहीं सुन रहा है, तो इसको गाली देना ही बेकार है। कहेंगे कि नहीं सुन लो, तुमने गाली दिया और तुरंत सुनते ही वो एक्शन में आ गया, तो तुम्हारा गाली देना सार्थक हुआ। गाली दिया वो एक्शन में नहीं आया तो गाली बेकार गया कि नहीं, है? गाली बेकार चला गया। इसी तरह प्रारब्ध आवे, और जिसका प्रारब्ध है उसको प्रारब्ध आया ये पता न चले तो प्रारब्ध का क्या प्रयोजन हुआ। उसको पता चलाना चलना चाहिए, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों उस जिसका प्रारब्ध है उसको अनुभूति होनी चाहिए, है? ये अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वेदना होनी चाहिए। वेदना का अर्थ अनुभव, अनुकूल का सुख भी अनुभव होना चाहिए, प्रतिकूल का दुख भी अनुभव होगा तो, भोक्ता को अनुभव होगा तो प्रारब्ध सार्थक हुआ, भोक्ता को अनुभव नहीं हुआ प्रारब्ध निरर्थक। इसका मतलब प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, वो प्रतीक्षा करता रहेगा जब तक तुम उसके वेदन यानी अनुभवकर्ता के रूप में तैयार नहीं होगे, तब तो प्रारब्ध क्षय नहीं होगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। तो शंकराचार्य ने कहा सौवर ऋषि कितने वर्ष तक रहे जल में, भागवत में लिखा है, नौवां स्कंद पढ़ लो, सौवर ऋषि के सारे करतूत, हाँ, 10,000 वर्ष तक जल के अंदर बैठे निर्विकल्प समाधि में, प्रारब्ध और वासना प्रतीक्षा करके बैठा है वो बिल्ली की तरह, जो चूहे निकलेगा तो मैं झपट लू। सौवरी ऋषि ने जैसे आंख खोली झपट लिया उसने, तुरंत पकड़ लिया, प्रारब्ध और वासना दोनों ने पकड़ लिया। देखो यदि राजयोग में लगे होते तो वासना क्षय हुआ चुका होता, प्रारब्ध रहता तो केवल प्रारब्ध पकड़ता, क्रिया योग में लगा हुआ होने के कारण वासना भी क्षय नहीं हुआ था, तो वासना भी प्रतीक्षा कर रही थी और प्रारब्ध भी प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों ने झपट लिया एक ही साथ, और सौवरी ऋषि अकेला और झपटने वाले शत्रु दो, पकड़ लिया दोनों तरफ से। क्या हुआ नाटक आगे तो आपको पता ही है, हमको बताने की जरूरत है, है? आपके सामने ही हुआ है ना सौवरी ऋषि की घटना, है आपके सामने हुआ ना, अरे रोज अपने साथ ही हो रहा है उनकी घटनाएं, पकड़ लिया और मछली की क्रीड़ाओं को देखते ही बस प्रारब्ध और वासना दोनों ने आक्रमण कर ली, तो बोले आहा जिंदगी तो ये है जीवन का रहस्य, सारा जीवन का सार तो यही है। ये 10,000 वर्ष तक मैंने ऐसे ही प्रारब्ध बेकार समय वैसे ही बर्बाद कर दिया, क्या जीवन देखो, ये मछलियों के जोड़े आपस में क्रीड़ा करते हुए देखा तो फिर निकले पानी के बाहर, और उस समय मानदाता ऋषि के यहां पहुंच, मानदाता राजा के यहां पहुंच गए, उनको पता चला कि इनके यहां 50 कन्याएं हैं एक से एक सुंदर, बस याचना कर ली कि राजन मेरी इच्छा है कि एक कन्या तुम मुझे दो, मुझे संसार करने की इच्छा है। वो राजा बड़ा असमंजस, 10,000 वर्ष पानी के अंदर बैठा, शरीर तो अन्न खोजता है, शरीर क्या खोजता है, अन्न खोजता है, अन्न नहीं खाया था इसलिए शरीर हट्टा कट्टा तो था नहीं, बूढ़ा सूखा हुआ पीला पड़ा हुआ था। राजा ने कहा कि इतनी सुंदर कन्या मेरी है अप्सरा जैसी, और ऐसे ये बूढ़ा और खसोट को दे दूं, कन्या क्या कहेगी, कहीं मेरी कन्या ये नहीं कहे इस तरह, यदि ऐसे बूढ़ों के साथ ब्याह कराना था तो पैदा होते ही क्यों नहीं मारा हमको, कितनी पीड़ा होगी उसको, अब यदि नहीं कहता हूं तो ये तपस्वी खतरनाक है श्राप दे देगा, सारा कुल नाश भी हो सकता है, क्या करूं। तो विचार किया कि महाराज आप जाइए, जो आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लो। राजा ये समझता था कि इस बूढ़े को देखकर कोई भी पसंद नहीं करेगा, कह दिया जो पसंद करेगा उससे शादी कर लो। सौवरी ऋषि समझ गया कि राजा की बदमाशी चलाकी चल रहा है, वो ये शरीर को देखकर विचार कर रहा है कि कोई भी पसंद नहीं करेंगे, समझता होगा मैं वहां पहुंचने से पहले अपने शरीर को ही कायाकल्प कर लेता हूं। तुरंत योगी तो थे ही, संकल्प कर ली, शरीर तो ऐसा युवा शरीर दे दीप्यमान, क्या दिव्य शरीर, भागवत में आता है ना साक्षात मन मत है। कृष्ण को जब गोपियों ने देखा ऐसा सुंदर देखा कि ऐसा लगता है कि साक्षात कामदेव ही यहां आ गया है। आप लोग दही को मतते हो लेकिन मन को मतते हो कि नहीं, मत मन को मतने क्षमता आप लोगों में निकाली, दही मतते जाओ है। लेकिन गोपियां क्या करती थी, दही मथती थी, और कृष्ण क्या करते थे, मन को मथते थे, दोनों ही मथने का काम करते हैं। वो तो साक्षात मन मत मथने दिन लग गए, तब सब ने संकल्प कर लिया यदि पति होगा तो यही होगा, बस यदि पति होगा यही होगा, इससे अलावा और कोई दूसरा पति नहीं होगा। हर कन्या सौवरी ऋषि के हाथ पकड़कर कहने लगे कि हम मेरा अनुग्रह करो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मुझे अनुग्रहित करो। अब तो कहां एक की कामना आ गए 50, सृष्टि क्या हुआ होगा उनकी, उनका आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक ही से आप लोग तंग हो गए हो, 50ों से क्या होता होगा, बोलो, भागवत लिखा है एक एक से 10-10 बच्चे हुए तो तो कितना बड़ा हुआ कुटुंब है, 50 × 10 है, 10 को 50 से गुणा करो, 500, 5000 ले जी। अब वो 50 हुआ, 5050 और खुद अपने 5051, इतना बड़ा कुटुंब के बीच में सौवरी ऋषि को रहना पड़ रहा है। योग की एक विशेषता है, भोगने के बाद योग शक्ति क्षय होता है। योग साधना के द्वारा जो शक्ति संचय किया हुआ होता है, वो शक्ति जब तक भोग में प्रयोग नहीं करोगे तब तक तो वो शक्ति संचित रहेगा, और जहां तुमने उस शक्ति का भोग में प्रयोग किया कि शक्ति क्षय होने लग जाएगा। ये देते हैं कर्म चीत लोक क्षीयते एवं एवा मूत्र पुण्य चीत लोक क्षीयते, क्योंकि योग भी तो तुम्हारे प्रयत्न से हुआ हुआ है, उसलिए उस योग का जहां तुमने भोग किया कर्मजन्य होने के कारण, योग भी तो कर्मजन्य है, योग विचारजन्य तो है ही नहीं, ज्ञानजन्य तो है ही नहीं, कर्मजन्य है, इसलिए वो नाशवान है। अब तो इतना बड़ा कुटुंब को संभालते संभालते योग सिद्धि भी खत्म हो गई तो अब क्या करोगे, रोने लग गए, छोड़े भागे, ऐसे भागे सौवरी ऋषि वहां से किसी को पता ही न चले, भाग गए जंगल में गए। तो वहां एक महात्मा बैठा हुआ था, क्या हुआ सौवरी ऋषि? बोले महाराज मैं तो बुरा फंस गया। कैसे? बोले कहां 10,000 वर्ष पानी में समाधि लेकर निर्विकल्प समाधि में बैठा था, निकला पानी से बाहर तो ये झंझट, और एक की कामना की थी तो 50 आ गए, और 50 से 5000 हो गए, अब मैं तो समस्या में फंस गया महाराज, अब मैं क्या करूं? तब फिर महात्मा ने कहा, अरे सौवरी ऋषि तुमने शुरुआत ही गलत की। क्या महाराज? तुमने मन को नियंत्रण करके अष्टांग योग और हठ योग के माध्यम से निर्विकल्प समाधि में गए, शिव योग नहीं किया, और यदि तुमने उस समय अपना मन शिव में लगा दिया होता तो आज तुमके सामने ये समस्या ना आती, तो उस समय तुम हट करने लग गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने जो मन है वो शिव के चरण में अर्पण कर दो, वो होगा शिव योग। मन का और शिव का जब जोड़ होगा, योग होगा, उसका नाम शिव योग, उसी से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार नहीं हो सकता। तब उन्होंने पंचाक्षरी दीक्षा दी और वहीं अपने ध्यान किया, भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने लग गए और सारे झंझट से मुक्ति मिली उनको, सौवरी ऋषि को। तो शंकराचार्य शायद उस प्रसंग को भी यहां स्मरण कर रहे हैं, उधर मांडव्य ऋषि का भी स्मरण किया, इधर सौवरी ऋषियों का भी ऋषि का भी स्मरण किया। हाँ, गुहायां गेहे वा बहिरपि बने वा दृश्य करे जले वा वन्नौवा वसतु वसते किं बद फलम। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, भयंकर गर्मी के समय में शरीर बिल्कुल नंगा करके पंचाग्नि तपस्या करते हैं और उसको योग कहा है। क्या कर रहे हो? बोले योग कर रहे हैं। हठ योग? कैसा हठ योग? तो बोले 5 जगह अग्नि जलाकर बीच में नंगे बैठते हैं और अग्नि धधक रही है। अब ये भी योग करते, देखो ऐसे को भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत व्यंग किया है। कर्षयस्त शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतस, चित्त को हृदय को अर्पण न करके इस प्रकार के जो योग करता है वह वास्तव में जड़मती है, अचेतस है, वह भूत ग्राम प्राणी समूह अज्ञानी, कर्षयंती शरीरस्थम, उसी के शरीर में रहने वाले मुझे ही कष्ट पहुंचाते हैं। किसके नाम पर? योग के नाम पर। लेव जी, हट के नाम पर। वो ये नहीं करते, समझते हैं कि योग का अर्थ होता है चित्त को लगाना, और चित्त को तो लगाएंगे नहीं, शरीर को जलाएंगे। शरीर का ही मान लो कि यही शरीर ही सब पाप का घर है, और समझते हैं कि शरीर ठीक हो जाएगा तो सब। अरे मन सारा पाप का घर तो मन है, हा? सारा पाप का घर तो मन है भाई, और पाप शरीर में भी नहीं रहता, पाप तो फिर मन में ही रहता। मर के जाओगे तो शरीर यहीं रहेगा कि नहीं, और मन तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं? तब पाप शरीर में रहता है तो तुम तो पाप मुक्त हो जाओगे, है? तब जाओगे तो फिर पाप तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो मर गए तो सारे पाप खत्म। तो इसी तरह फिर मर गए तो पुण्य भी तो खत्म। पाप और पुण्य यदि शरीर में रहता है, यदि मानेंगे तो मर के जाने वाला का शरीर तो यहीं जला देंगे, राख हो जाएगा चंदनवाड़ी में, है? तब तुम्हारे पीछे जाएगा पाप और पुण्य, लेकिन जाता है कि नहीं? इसीलिए पाप पुण्य ये कर्म, कर्म का संस्कार वासना ये स्थूल शरीर में नहीं रहता, ये तुम्हारे हृदय में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, तो उसमें जो है वो भी साथ में चला गया, गया कि नहीं? उसमें जो है वो भी साथ में चला गया। तब उसी को अर्पण करो, परमात्मा को। जले वन्नौवा वसतु वसते किं बद फलम। ये भक्ति का प्रसंग है, इसीलिए बता देना बहुत जरूरी हो। महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, कोई एक बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, महात्मा थे, उन महात्मा के दो चेले थे, एक हठ योगी, दूसरा परम भक्त, भगवान का अनन्य भक्त था। एक हठ योगी था, हठ योगी ने तो यह निश्चय कर लिया कि मैं कठोर से कठोर साधना करूं और जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन कर लूं, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान का जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूं। उसने ये निश्चय कर लिया, बस पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया। हठयोगी बैठ गया, केवल एक कौपिन धारण की और पांच जगह आग लगाई, बीच में बैठा, वो भी गर्मी के महीने, है? मई जून के महीने, मई जून के महीने में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, अब आजकल तो अहमदाबाद में भी वैसे ही होता है, नहीं बहुत होता है, 45-47 तक जाता है अहमदाबाद में भी टेम्परेचर, कितना गर्मी होता है जहां 45-50 तक टेम्परेचर जावे, ऐसी जगह भी फिर आग जलाकर बीच में बैठे, कम कठिन है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो। बंबई वाले तो यहां तो कुछ भी नहीं है टेम्परेचर, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस के टेम्परेचर के सामने 47-48, आगरा देख लो, मथुरा वृंदावन, यहां तो कभी भी शायद 35-36 से ऊपर नहीं जाता है, जाता है बंबई, हैं? 40 पहुंचने के तो कल्पना ही मत करो, हैं? तो यही भी सब हो, बहुत गर्मी छे, बहुत गर्मी छे बोलते हैं, और तुम पंचाग्नि तपोगे? उसने पंचाग्नि तापना शुरू कर दिया, किसलिए? बोले जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन करो, और दूसरा सा भगवान का भक्त, वो तो भक्ति भजन शुरू कर दिया, को भजन, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण शरणम मम, बस लग गया कीर्तन में लग गया। कहते एक दिन नारद जी घूमते हुए पहुंच के, कहानी सुना है कई बार तुम लोगों ने, प्रासंगिक है, मैं फिर भी सुना देता हूं। तो कहते नारद जी मिल गए उस हठ योगी के पास, नारद जी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है इतना कठोर, तो ये क्या कर रहा है, आग जलाकर उसके बीच में बैठा है। बोले मैं हठ योग कर रहा हूं, पंचाग्नि ताप रहा हूं। नारद जी पूछा कि क्यों? बोले जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन करना है, इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं। अच्छा आप कौन है? बोले मैं नारद हूं। तो आप कहां जाने वाले? बोले वैकुंठ जा रहा हूं सीधे ही। तो आप सीधे वैकुंठ जा सकते? बोले हां। कैसे? बोले भगवान ने हमको एक अलग स्पेशल शरीर दिया है और उनके दिए हुए शरीर से हम सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान का दिया हुआ जो शरीर था उस शरीर से सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। कौन? नारद जी। वीजा लेने नहीं पड़ता उस शरीर में। नारद जी अमेरिका जा सकते हैं उस शरीर से? वीजा लेना नहीं पड़ेगा, सच बात कह रहा हूं। तो फिर नरक जा सकते हैं कि नहीं? वीजा लेना पड़ेगा नरक के लिए है? अरे भाई नरक में भगवान है कि नहीं? यदि भगवान नरक में रह सकते हैं तो नारद जी को भगवान को दर्शन करने नरक जाने में क्या आपत्ति? सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, इसलिए नारद जी सब जगह जा सकते हैं। और नरक जाने के लिए जो कर्म चाहिए वो कर्म नहीं होगा और न जाए वो बात अलग चीज है, लेकिन उनको कोई अड़चन नहीं, अबाधित गति है उनकी, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा आप वैकुंठ जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने? बोले हां। तो आप भगवान से हमारी बात कह देना कि एक भक्त इस प्रकार का कठोर तपस्या कर रहा है आपके दर्शन के लिए, तो कब दर्शन देने आने वाले हैं आप पूछ लेना, हमारी बात कह देना उनको, पूछ लेना। बोले ठीक है कह देंगे। आगे बढ़े तो कीर्तन कर रहा है मस्ती से नाच रहा है कीर्तन कर रहा है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले भगवान की भक्ति कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्यों? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन हो, इसलिए मैंने सब चिंतन छोड़कर कीर्तन करना शुरू किया। तो आप कौन? बोले नारद। कहां जा रहे हैं? वैकुंठ। भगवान के यहां। अच्छा तो उनको भी हमारी बात भी कह देना भाई, आपका भक्त इस तरह आपके लिए भगवान आपके लिए भजन कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए कब जाने वाले हैं पूछ लेना। बोले ठीक है पूछ लेते हैं। नारद जी पहुंचे, सारा हाल खबर विश्व का बताया। तो कहा कि महाराज आपको पता है? भगवान ने कहा क्या बेटा? बोले मर्त्यलोक में मैं आते समय दो आदमी आपके दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं, एक तो बड़ा कठोर तपस्या कर रहा है पंचाग्नि ताप रहा है। हमने कहा ये क्यों कर रहा है? तो बोले आपके दर्शन करने की इच्छा से। तो आप बता दीजिए तो उसको दर्शन देने के लिए आप कब जाने वाले हैं बता दे, क्योंकि हमको लौट के जाएंगे तो फिर उसको बताना है आपका रिपोर्ट। तब दूसरा, जो आपके दर्शन के लिए भक्ति कर रहा है भजन कर रहा है कीर्तन कर रहा है नाच रहा है उसको दर्शन देने के लिए कब जाएंगे बता दो। तो भगवान ने कहा कहते हैं नारद जी को, वो जो पंचाग्नि तप रहा है ना उसको जाके कह देना इसी तरह पांच जन्म तक। कब तक? पांच जन्म तक पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, फिर पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे, फिर पैदा हो, पंचाग्नि तपे, तपते तपते मरे। पांच जन्म जब पूरा होगा तब मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा, बोल देना।
0: अपॉन हियरिंग दिस अनाउंसमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली एट shaivam@shaivam.org। दिस रेडियो सर्विस हैज बीन मूव टू ए न्यू एड्रेस एंड द सर्विस एट दिस एड्रेस विल बी डिसकंटिन्यूड शॉर्टली। Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya. Upon hearing this announcement, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Divine Discourse. In this, you are about to listen Highlights of Upanishads. The title is Chandogya Upanishad, presented by Swami Jyotirmayananda. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: We are recording from the ashram of our revered Guru Pujya Atman Shri Swami Jyotirmayananda in Miami, Florida. Swamiji continues with the lecture series on the Upanishads, and Swamiji will lecture on Chandogya Upanishad, class number 29. And now, Pujya Atman Shri Swami Jyotirmayananda.
4: Om Aapyayantu Mamangani Vak Pranah Chakshu Shotramatho Balamindriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam Mestu Tadatmani Nirate Ye Upanas Chakshu Dharma, te mayi santu, te mayi santu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Chandogya Upanishad, towards the concluding portion, is chapter 8, section 3. And from the mantra 1 onwards, I will give you the highlight of this Upanishad. Previous time, we have talked about Dhara Upasana, Dhara Akash, space within the heart. And you are given insight into that mystic space, which is the essential nature of your soul. Same as Brahman, the Absolute. And when Brahman is realized, all your desires are fulfilled. In the process of realizing Brahman, you discover an amazing power, the power of Sat Sankalpa. Sankalpa means desire.

0: दशपञ्चमः
1: ओम। अपॉन हियरिंग दिस अनाउंसमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट अस इमीडिएटली एट shaivam@shaivam.org। दिस रेडियो सर्विस हैज बीन मूव टू ए न्यू एड्रेस एंड द सर्विस एट दिस एड्रेस विल बी डिसकंटिन्यूड शॉर्टली। Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Hari Om. पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन। कुछ घटना ऐसी होती है कि हमें हमेशा याद रहती है, और उसी समय कोई ऐसे ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो ऐसे संत हमारे बीच में आ जाते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। महाराज जी ने, अगर ध्यान हो तो बहुत ही कम समय के लिए, 16 फरवरी को महाराज जी बता रहे थे, 6-7 दिन के लिए, और तैतरीय उपनिषद के मंगलाचरण की समझो एक विधि की थी प्रेमपुरी के लिए, और उसी मंगलाचरण की कृपा है कि महाराज जी फिर से यहां बता रहे हैं। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को स्वागत करते हैं। वही तैतरीय उपनिषद महाराज जी द्वारा हमें प्रवचन के रूप से सुनेंगे हम। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन। हरिओम।
4: भक्त शक्ति समिता वास्तल में माताओं स्ने बहनों, आप सर्वबंधुओं, तैतरीय उपनिषद पर मंगलाचरण को लेकर चर्चा की थी और शिक्षा अध्याय को लेकर के थोड़ी चर्चा हुई थी। उसके पश्चात पुनः जो है प्रतिज्ञात जो है मंगलाचरण यहां शास्त्रकार कर रहे हैं उसके अंतर्गत चर्चा की जा रही है। उपासना विषयक पहले चर्चा कर रहे हैं और उस उपासना का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो यहां पर उपास्य रूप से ओंकार को संकेत कर रहे हैं और उस ओंकार की उपासना को लेकर के ही पहले प्रतिज्ञात्मक वाक्यों को लेकर के प्रार्थना कर रहा है ऋषि, और उसमें संकेत कर रहा है यश छंदसा मृषभो विश्वरूपः। पहले ही ऋषि ने कहा यह छंदसाम ऋषभ, संकेत किया छंद माने वेद, जो छंदों में वेदों में कैसा है तो ऋषभ। अब ऋषभ शब्द के अर्थ श्रेष्ठ भी है और कहीं कहीं ऋष धातु से लेकर के ऋषभ शब्द का अर्थ ज्ञानात्मक ज्ञान रूप भी लिया जाता है। तो यहां पर प्रसंगानुसार ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। तो संकेत करते हैं यह छंदसाम ऋषभ, जो वेदों में क्या है श्रेष्ठ है, जो वेदों में श्रेष्ठ है और कैसा है तो कहा विश्वरूप, जो वेदों में श्रेष्ठ है और विश्वरूप है माने सर्वरूप है। विश्वरूप का मतलब क्या है, कहा जो सर्वरूप, तो जो वेदों में श्रेष्ठ और सर्वरूप है ऐसे उस ओम की तरफ संकेत करते हुए ऋषि कर संकेत कर रहा है। तो ऐसे उस ओंकार को उपास्य बनाने के लिए कहा कि जो वेदों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वरूप है, और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया छंदोभ्यो अधि अमृतात संबभूव, और क्या कहा, कहा जो वेद हैं उन वेदों के द्वारा, उन वेदों से क्या है कहने लगे अधि अमृतात, जो अमृत है या जो अमृतत्व है ऐसे उस अमृतत्व का हेतुभूत जो जो अमृत है उस अमृतत्व का हेतुभूत जो उस हेतुभूत का ही जो अधिष्ठान है, अधिउपसर्ग को लेकर के उसका जो अधिष्ठान है, ऐसे उस अधिष्ठान की जो है उपासना के लिए है। तो क्या संकेत करते हैं, कहा कि वह अमृतत्व का हेतुभूत जो है ऐसे उस ओंकार की हम उपासना के लिए, यहां पर ऋषि भी संकेत करता है संभु अर्थात उस, ये सब संकेत किया और फिर प्रार्थना करते हैं समेन्द्रो मेधयास प्रणोतु, फिर उसी के स इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यहां देवता विषयक मात्र नहीं, इंद्र शब्द का अर्थ है यहां ईश्वर रूप है। जो संकेत करते हैं इंद्रो मायावी पुर रूप ईयते, तो वहां पर संकेत क्या किया, माया के द्वारा उस इंद्र ने सारे संसार का निर्माण किया, तो वहां इंद्र शब्द से केवल जो है स्वार्गिक इंद्र है उसको ग्रहण नहीं किया, वहां पर इंद्र शब्द से लिया गया कि माया के द्वारा सृष्टि करने वाला कौन, तो ईश्वर। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं स इंद्र अर्थात मां मेधयास प्रणोतु, मेधा के द्वारा, मेधा से इस प्रणोतु माने हमें युक्त करे अर्थात मेधावान बनाए या हमारे अंदर वह सामर्थ्य प्रदान करे जिसके द्वारा हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करके और उस अमृत के जो अधिष्ठान है और उसका हेतुभूत जो है उसकी उपासना करके हम जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर सके। इसलिए जो है ऐसे उस बल का हमें जो है या ऐसी उस सामर्थ्य का जो है हमें प्रदान करे या वो सामर्थ्य वाला हमें बनाए, ऐसा यहां संकेत करते हैं। और आगे संकेत किया फिर अमृतस्य देवधारणो भूयाशम, है ना, तो वो जो देव है वो क्या करे उस अमृत का धारण कराने वाला मैं हो जाऊं, ऐसा जो है मुझे बल दे, तुम उस अमृत को धारण कराने वाला मुझे बनाए या मैं ऐसा हो जाऊं। तो ये संकेत किया तो उस देव से ही प्रार्थना करते हुए, और वो देव क्या है तो यहां ओंकार को ही उपास रूप से ग्रहण कर रहे, ये संकेत कर रहे, यहां भूमिका बना रहे। और फिर ऐसा कहते हुए आगे संकेत किया शरीरम में विचर्षणम, मेरे शरीर को वो कैसा बनाए तो विचक्षण बनाए अर्थात उस सामर्थ्य वाला बनाए। शरीर भी क्या है तो कहा एक साधन है, और साधन किसका है तो कहने लगे शरीर जो है साधन संसार के पदार्थों का भी है, और संसार के पदार्थ जो है वो शरीर के लिए साधन है, लेकिन उन साधनों से युक्त होता हुआ शरीर रूपी साधन किसके लिए है तो वो संकेत करते हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए, उसका जो है शरीर का जो है वास्तविक साध्य क्या है तो कहने लगे पुरुषार्थ। संसार के पदार्थ पशु आदि धन आदि जो कुछ भी है वो शरीर के साध्य नहीं, यहां संकेत करते वो शरीर के क्या है, वो शरीर के साधन है, और शरीर भी स्वयं में साधन है, शरीर साध्य भी है, किसके लिए साध्य है तो कहने लगे संसार के पद पदार्थों के लिए तो वो साध्य हो गया, उस शरीर के लिए वो सब साधन है, लेकिन शरीर स्वयं में भी साधन है। तो साधन जब शरीर है तब उसका साध्य क्या है तो वहां सीधे अर्थ में कह देते पुरुषार्थ ही उसका क्या है का साध्य है, और उसका शरीर साधन है। तो शरीर जो है शरीर रूपी साधन किसके लिए है, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने के लिए। अब पुरुषार्थ शब्द से चार पुरुषार्थों को हम लेते हैं, लेकिन यहां पर श्रेयता की दृष्टि से संकेत कर दिया जाता है कि अन्य साधन तो उसके संसार के पद पदार्थों के अंतर्गत लोक विशेष को लेकर के आ गए, लेकिन वास्तविक उसका साध्य क्या है तो मोक्ष ही उसका साध्य, अमृत ही उसका साध्य, और उस अमृत का हेतुभूत क्या है तो उसके लिए हेतुभूत जब कहेंगे तो ज्ञान ही है, क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के लिए ये शरीर है। अब ये शरीर जो है तो वो हमारा शरीर रूपी साधन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए कहने लगे कि शरीर रूपी जो साधन है वो भी सामर्थ्य युक्त हो, वो भी सामर्थ्य वाला हो। तो इसलिए कहा कि शरीरम में विचर्षणम, हमारे शरीर के अंतर्गत भी वो विलक्षणता जो साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो, अर्थात सामर्थ्य को प्राप्त हो या बल को प्राप्त हो, तो ऐसा बल जो है मेरे शरीर को भी प्रदान करे। शारीरिक दृष्टि से भी संकेत किया और जिह्वा में मदमत्तमा, फिर एक एक अवयव को लेके कहने लगे मेरी जिह्वा कैसी हो जाए, तो केवल मधु युक्त नहीं, मीठी नहीं हो जाए, क्या हो जाए, मधुमत्तमा, माने जो श्रेष्ठ मधुरता है उस मधुरता वाली हो जाए। तो ये सब सामान्य रूप से संकेत कर रहे। ऐसे ही आगे कह दिया कर्णाभ्याम भूर विश्रवम, और कानों से जो है मैं बहुत सुनने वाला हो जाऊं, कानों से क्या हूं, बहुत सुनने वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से कहते हुए फिर आगे कहा ब्रह्मणा कोसोसी, क्या कहा, ब्रह्मणा कोसोसी माने ब्रह्मणा कोसा असी, यह जो है कौन, जिसकी हम उपासना करने जा रहे, जिसे हम अपना उपास्य बना रहे हैं, वो उपास्य कैसा है, तो कहने लगे वो ब्रह्म का कोष है, वो उस अमृत का कोष है। कोष माने कोष को कह दो तो एक आवरण, क्या कोष माने क्या है, आवरण, या उस ब्रह्म के लिए रहने का स्थल विशेष, ऐसा संकेत। यद्यपि ब्रह्म वहां रहता नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रतीक उपासना को लेकर के हम लोग जिस भाषा में रहते हैं और जिस भाषा के व्यवहार से समझते हैं उसी को समझाने के लिए यहां कोष शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वो ब्रह्म का कोष है और उसका भाष्य में संकेत किया कि जैसे तलवार का कोष क्या है, उसका म्यान, ऐसे ही यहां पर जो है ओंकार जो है वो क्या है, ब्रह्म का कोष। क्यों, ब्रह्म में वास्तव में कोष आदि नहीं, लेकिन ये ओंकार जो है ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, क्या है, ब्रह्म का अत्यंत, यद्यपि ओंकार को सब कुछ कहा, ओंकार है इति सर्वम, ओंकार जो है वही सब कुछ है, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म ऐसा भी कह दिया, लेकिन ये जो सारा वर्ण है वो किस लिए है, तो ओंकार को हम उपास्य बना रहे, और ओंकार की जब हम उपासना करते हैं तो ब्रह्म के प्रतीक रूप से करते, इसलिए ब्रह्म के प्रतीक रूप से उपासना करने के कारण, और वो प्रतीकता जैसे अन्य प्रतीकताएं हैं वैसा नहीं, वो श्रेष्ठ प्रतीकता है, वो ब्रह्म की अत्यंत समीपी जो है प्रतीकता है, इसलिए ओंकार को ब्रह्म का अत्यंत समीपी होने के कारण निर्दिष्टो ही ब्रह्म ऐसा संकेत किया, प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है वो ब्रह्म का अत्यंत समीपी, जैसे वहां जो है को शब्द से भी कह दिया तो तलवार का अत्यंत समीपी कौन है, काम्या उसमें रहती है, अब वो इस प्रकार से वहां पर रहती, लेकिन कार्य करने के समय तक कोष से बाहर आ जाती, तो इसे संकेत यहां कर रहे हैं कि ब्रह्मणा कोशोषी, यह जो ओम है वही क्या है, ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का अत्यंत समीपी है। और ऐसा संकेत करते हुए फिर कहा कि कोशोषी मेधया पीत, अब फिर संकेत किया मेधया, मेधा के द्वारा, अब ऐसे उस ओंकार को भी प्रतीक को भी हम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते, तब कहने लगे क्यों समर्थ नहीं होते, तो मेधया पीत, क्योंकि मेधा के द्वारा, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति, मेधा माने बुद्धि में रहने वाली ग्राहक शक्ति विशेष का नाम ही है क्या, मेधा, तो अब उस मेधा के द्वारा पीता मने वह छिपा हुआ है या ढका हुआ है, अर्थात उस मेधा ने ही उसको छिपा दिया और मेधा जो है उसको देखने में समर्थ इसलिए नहीं हो, तो मेधया पीतः वो बुद्धियों से ढक गया, सीधे अर्थ में कह दें तो वो बुद्धियों से ढक गया। श्रुतम मे गोपाय, और आगे संकेत किया मेरा जो श्रवण किया हुआ है वो उसकी क्या करो तो रक्षा करो। ये सब जो है सामान्य अर्थ को लेकर के यहां संकेत किया। आगे संकेत किया आवहंती वितनवाना, माने मेरे लिए आवाहन करने वाली, बुलाने वाली, और जो है वितनवाना विस्तार करने वाली है। तो इस प्रकार से जो है उपासना करते हुए अपने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे लिए जो है मने इन वलों आदियों को लाने वाली और उस वल आदि का विस्तार करने वाली। तो श्री आदि के लिए भी संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य रूप से इस मंगलाचरण के अंतर्गत चर्चा की। अब ये वल की बात जो कही, देखो नियम ये है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी एक मंत्र आता प्रारंभ में ही, इसे तोर्जे त्वा वायवस्था त्वा देवो सवितः वा प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्याद्वयम् माग्नः इन्द्राय। और उसके बाद फिर इस प्रकार से चर्चा करते हुए आगे चर्चा की। अब यहां पर संकेत किया गया, तो पहले वहां पर भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये कहा मने तोर से त्वा ऋषे, वहां भी संकेत किया मने उस श्रेष्ठ अन्न आदि को हमें प्राप्त करो कराओ। और उस अन्न आदि को जब हम प्राप्त कर लें तो कहीं उसके बाद कहा ऊर्जे, मने हमें ऊर्जा बल प्राप्त कराओ। और बल प्राप्त हो जाए तब संकेत किया उस बल से संपन्न होकर के, क्योंकि वह देवता कैसा है त्वा वायवस्था, वायु रूप तुम हो, वायु के समान बल वाले हो, ऐसे उस देवता से प्रार्थना करते हुए। और कहा इतना ही नहीं त्वा देवो सवितः, केवल वायु रूप ही नहीं हो, क्या हो, प्रकाश रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो इसलिए मैंने ऐसा संकेत करते हुए उससे प्रार्थना की कि पहले जो है उस देवता से कहा हमें अन्न ग्रहण कराओ। क्यों अन्न ग्रहण कराओ? कहा अन्न ही जब हम ग्रहण करेंगे तभी क्या होगा, कहा शरीर विलक्षणता को बल को प्राप्त होगा, और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर में भी सामर्थ्य नहीं। लेकिन केवल ग्रहणता का ही नहीं, इसलिए आगे भी यहां समदम आदि की चर्चा भी प्रार्थना करेंगे। मने अन्न तो हमने ग्रहण कर लिया, या जो हमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ हैं, अन्न का मतलब अतीत अन्नम, जो जिसके ग्रहण करने से शरीर पुष्टि को प्राप्त हो वही यहां पर अन्न शब्द सी। तो अब अन्न हमने प्राप्त कर लिया या शरीर के साधनों को प्राप्त कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अन्न तो हमें मिल जाए लेकिन कभी कभी स्वाद से थोड़ा अधिक खा जाते तो क्या हो जाता, तो अजीर्ण हो जाता। और अजीर्ण हो जाता है तो अन्न खाया किस लिए था, इसलिए खाया था कि हमें बल की प्राप्ति हो। लेकिन जब उसने अजीर्णता पैदा कर दी तो बल न होने के अपेक्षा बल कम और हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर संकेत किया गया, इसलिए कहा कि अन्न को इतना ही से कहने से काम चल जाता, फिर आगे ऊर्जे शब्द की बल प्राप्ति के लिए क्यों प्रार्थना की, इसलिए कि अन्न को हम साधनों को एक उचित मात्रा में एक मर्यादित रूप से ग्रहण करें और ग्रहण करके उससे बल की प्राप्ति करें। और वो बल जब हमें मिल जाए तो बल को देने वाला भी कौन है, तो इसलिए संकेत कर दिया कि वायु शब्द का त्वा वायवस्था, वायु रूप भी तुम, क्यों जानते हैं आप सब लोग जितना भी शरीर के अंतर्गत आप बलात्मक कार्य करते हो वो कब होता है, कोई भी क्रिया करते हो तो कब होती है, तो कहने लगे शरीर में बल होता, लेकिन वो बल भी काम कब करता, वो बल है कौन, उस बल को भी प्रेरित करने वाला कौन है, हम वाणी बोल रहे हैं तो बोलना रूप जो बल है वो अभी कब है। तो यदि वायु नहीं होगी तो ये वाणी का प्रस्फुटन नहीं होगा, वायु नहीं होगी तो हाथ उठेगा नहीं, ठीक है। तो इस शरीर के अंतर्गत, और यहां तक कह दिया है रसो वही सहज श्रुति आई, तो ये यदि हेस आकाशो नश्यात कोवान्यात कोवा प्रांड्यात, यदि ये आकाश नहीं होता वहां संकेत दिया तो है अपहनन आदि क्रिया प्राणन आदि क्रिया कौन करता, और ये क्रिया यदि नहीं होती तो जीवन भी नहीं होता, ये संकेत किया। तो इसलिए संकेत क्या किया, इसलिए तुमेव वायु है क्या है प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, इसलिए वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कह दिया, ब्रह्म है ऐसा नहीं किंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म शब्द से कहा, मन इंद्रियों के द्वारा सामर्थ्य देने वाला इंद्रियों से ग्रहण होने वाला ब्रह्म कौन है तो वायु है, तो ऐसा संकेत वहां। तो इसलिए तो वायु क्या है, इसलिए कहा त्वा देवो वायवस्था, तुम क्या हो वायु रूप हो, तो वायु वह सारा बल देने वाला है, वायु बल की प्रेरणा करने वाला है, उस वायु के बगैर ये कोई क्रिया संभव नहीं हो सकती, ऐसा वहां संकेत किया। और इतना संकेत ही नहीं साथ में जो है कहा वायु भी है, और उसके बाद कहा कहने की त्वा देवो सवितुर सविता है, सविता शब्द का प्रयोग किया, सविता शब्द का अर्थ क्या है तो मन सूर्य और प्रसव करने वाला, ऐसा भी संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से ऐसे देव से प्रार्थना करते हैं और अन्न को ग्रहण करें, अन्न को ग्रहण करके बल की प्राप्ति हो, और बल की प्राप्ति हो तो उस बल का प्रयोग क्या होना चाहिए है ना, तो शक्ति परेशम परपीडनाय, हमें यदि शक्ति मिली है बल मिला है तो क्या करें दूसरों को पीड़ा दें, कहा नहीं साधु और खल के लक्षणों में जो बतला दिया स्वास्थान में, तो कहने लगे नहीं वो किस लिए है, दूसरों की रक्षा करने के या अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति करने, तो बल प्राप्त करें और उस बल को प्राप्त करके हम अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ये संकेत किया। तब वहां कहा वो कैसे होगा, तो संकेत क्रम से दिया, एक साथ तो बल प्राप्त नहीं होगा, तब कहा श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायुद्धम, मने कर्म भी हैं, तो एक तो आप गीता में सुनते हो कर्म विकर्म और अकर्म, अब यहां पर जो शब्द आया कर्म को लिया, कर्म की भी गतियां फिर विभाजन कर दी, कर्म में भी भेद कर दिया कर्म, फिर श्रेष्ठ तर कर्म और फिर श्रेष्ठ तम कर्म, तो वहां कर्म के लिए नहीं कहा, अब इतना कह देने से जहां पर ये कर्म अकर्म विकर्म और फिर कर्म में कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म, इसमें काम्य निषिद्ध तो पहले ही से निवृत्त हो गई, इतना विधान करने से काम्य और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वर्जन पहले ही से हो गया, और कर्म जो है अब वो कर्म को लेकर के संकेत की, तो श्रेष्ठतरम कर्म के लिए नहीं कहा श्रेष्ठतम कर्म, और श्रेष्ठतम कर्म क्या है तो श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ, इसलिए यहां जप होम की विशेष चर्चा भी करेंगे। तो अब श्रेष्ठतम कर्म करें माने यज्ञात्मक कर्म करें, और यज्ञात्मक कर्म करेंगे और उस कर्म के करने के बाद फिर संकेत आगे कर दिया माग्न्यः इंद्रायो, इंद्र आदि के भाग का जो है आप जो है हनन न करें, अर्थात इंद्र का जो भाग है वो इंद्र को प्रदान करें, तब क्या होगा तो जी गीता में सुन तो देवान भावयता नीन ते देवा भावयंतो परस्पर भावयंता श्रेया परम, यदि जो देवताओं जिन देवताओं ने, अब देवता सूर्य भी है चंद्रमा भी है पृथ्वी भी है, हैं लेकिन यहां तो लोग कहेंगे ये तो रूढ़िवादी हैं, लेकिन यहां पर शास्त्र जो कहता है कि पृथ्वी भी देवता है सूर्य भी देवता है वायु भी देवता है चंद्रमा भी देवता, और ये क्यों कहा देवता, तो यहां पर देवता इसलिए है यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो क्या है संसार में केवल स्थावर जंगम जितने भी हैं उनका जीवन दूभर हो जाए, वायु यदि अपने बल को नहीं दे तो भी इनका जीवन दूभर हो जाएगा,

वा सर्वभूते। लेकिन ये जो है माध्यम है, प्रतीक है, इनके द्वारा जब हमें प्राप्त होता है तो हमें भी इनके प्रति क्या करना चाहिए है? एक मंत्री आकर के तुम्हें जो है कुछ दे दे तो तुम क्या करते हो? ईश्वर कहोगे, ईश्वर तुम हो, भगवान तुम हो, सब कुछ तुम, और कम से कम मालाएं डालोगे, उसे धन्यवाद दोगे, और जो तुम्हें सारा जीवन दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं? तो जो हमें जीवन दे रहा है उसके प्रति हम धन्यवाद तो कम से कम करें, उसको कम से कम नमस्कार तो कर लें, उसके प्रति एक आस्था तो रखें। तो यही क्या है यज्ञ। तो देव तुमको देते हैं तो देवों के प्रति भी एक सद्भावना बनाना, ये क्या है? एक यज्ञ, एक आस्था रखना। लेकिन हमारी तो वहां आस्था ही नहीं होती, समस्या ये। फिर हम कहते हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ। भाई जो देने वाला है उसके प्रति तुम्हारी भावना क्या है? और जब तुम्हारी भावना ही नहीं है तो वो तुम्हारे पर प्रसन्न कैसे होगा? तो ये संकेत, तो इसलिए वहां संकेत जो कर दिया कि वह बल हमें प्रदान करे, और ये सब है श्रेष्ठतम हम कर्म करें। तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है? कि श्रेष्ठतम कर्म ये है कि जो हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है, कम से कम जो है हम उसके कृतज्ञ न बन पाए तो उसके प्रति सौहार्द रखते हुए कृतघ्न न बने। यदि कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता भी नहीं होनी चाहिए, तो ईर भी कम से कम हो तो भी अच्छा। लेकिन यहां तो कह रहे श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वम, श्रेष्ठ तम कर्मों को करना चाहिए। ये संकेत किया और कहने लगे श्रेष्ठ कर्मों को करके और हमको भी श्रेष्ठता प्राप्त हो गई, तब हमारे शरीर की विचक्षणता हो गई, तब क्या होना चाहिए? तो कहने लगे इतना होने पर अब इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बल भी मिल गया, समाज में तुम्हें यश भी मिल गया, और सर्व रूप से तुम समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। लेकिन इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं। तब आगे संकेत किया आगे क्या करना है, तब कह दिया है वहां पर कि हैं क्या करो? तो कहने लगे को हम हैं कुत आयाता कहा मे जननी को मे ताता इति परिभाव सर्वम सार मन से विचार है वारम। तब जो है यहां से विचार प्रारंभ होना चाहिए और ऐसा जो है उसको जानने के लिए यह प्राप्त और उसको जानने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। तो उसी को यहां संकेत करते और उसे जो जानने की जो इच्छा होगी और उसको जब जान लोगे तो वही परम पुरुषार्थ है। तो उसी को जानने के लिए यहां पर जो है साधना का प्रकरण शुरू करते, अब उसकी लंबी व्याख्या नहीं करें। तो अब जो है हमको क्या करना है, बल आदि हमसे कह रहे हैं कि जो छंदों में श्रेष्ठ है उसके लिए संकेत कर दिया प्रतीक रूप से जो हमारा साध्य है, और ऐसा वही अमृत का अधिष्ठान है, और कोई नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, है ना? सब क्या चाहते हो? कहा मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं, मेरी मृत्यु न। लेकिन उस अमृतत्व का जो अधिकरण है, अमृतत्व का जो अधिष्ठान है, और उस अमृतत्व को प्राप्त कराने का जो हेतु है, निमित्त है, वो कौन है? तो अधिष्ठान तो ब्रह्म है, और उसे प्राप्त कराने वाला हेतु कौन है? तो ज्ञान है। तो अब वो ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हमें ये ज्ञान करना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसके लिए हमारे लिए ये सारे साधनों को क्रम से बतलाते हैं, क्योंकि इन साधनों से संपन्न होते ही तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये नहीं कहा केवल हम ब्रह्म की बात सुनकर के और हम अपने को ब्रह्म सिद्ध कर लें और सारे की सारी श्रृंखलाओं का परित्याग कर दें, तो ये नहीं कहा। न तो भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने कहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उसकी श्रेयता है, वो श्रेष्ठ है, वो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा कह करके किसी का खंडन नहीं किया। हां ये जरूर कहा कि यहां तक वो सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों तक सीमित रह गए तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। अंतिम सीढ़ी क्या है? तो संकेत कर दिया अंतिम सीढ़ी तो जब जो है इसके लिए वहां संधि शब्द की चर्चा कर दी। पूर्व में जो शिक्षा विभाग था तो संधि की चर्चा की, और संधि क्या है? जहां वर्णों के उच्चारण को लेकर के और प्रयत्न विशेष को लेकर के और उनके स्वरों के ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं को लेकर के और जहां पर उनकी समीपता हो जाती है उसका नाम क्या है? संधि। और उसी को अधिज्योतिष है अधिप्रज अध्यात्म आदि शब्द से विभाग करके बतलाया था। तो ये संधि, अब वहां पर संधि क्या, तो लोगों को लेकर के भी

0: प्राप्ति हेतु श्री शिव सहस्रनामावली।
1: भवाय नमः शिवाय नमः हराय नमः रुद्राय नमः पुष्कलाय नमः मुग्धलोचनाय नमः अग्रगण्याय नमः सदाचाराय नमः सर्वस्मै नमः शंभवे नमः महेश्वराय नमः ईश्वराय नमः स्थानवे नमः ईशानाय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वंद्याय नमः शंकराय नमः परमेश्वराय नमः गंगाधराय नमः शूलधराय नमः परार्थैकप्रयोजकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वदेवादये नमः।

कामशासनाय नमः कपर्दिने नमः कामशासनाय नमः श्मशाननिलयाय नमः तिष्याय नमः श्मशानस्थाय नमः महेश्वराय नमः लोककर्त्रे नमः भूतपतये नमः महाकर्त्रे नमः

नमः विद्रुमच्छवय नमः भक्तिगम्याय नमः पराय नमः ब्रह्मणे नमः मृगबाणार्पणाय नमः अनघाय नमः अद्रिद्रोणि

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः,

नमः मखद्वेषिने नमः विष्णुकन्धरपातनाय नमः वीतदोषाय नमः अक्षयगुणाय नमः अन्तकारये नमः पूषदन्तभिदे नमः धुर्झटये नमः खण्डपरशवे नमः सकलाय नमः।

भगवत भक्तजन, सद्गुरु एक श्रद्धा के पात्र है। आचार्य शंकर गुरु मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना अंत्य योनि को प्राप्त किया हो, जिनकी चेतना उस अद्वैत अनुभव में, अनुभूति में स्थिर है, जिन्होंने वो शक्ति को आविष्कार किया, साक्षात्कार किए, जो एक अद्वितीय चैतन्य शक्ति संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है, दृश्य जगत दृष्टा जगत में वही सत्ता विराजमान है, उसी सत्ता का ही संपूर्ण विलास यह संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। केवल उतना ही नहीं, इस वेष्टि शरीर में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस अनुभव करता, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय के द्वारा जो विषयों को अनुभव करने वाला, जिसकी उपस्थिति से यह संपूर्ण भोग्य भोग एवं भोक्ता विराजमान है, सत्तामान है, केवल जागृत में ही नहीं, वही चैतन्य शक्ति विशिष्ट स्वप्न अवस्था में भी विराजमान है, जागृत है। सभी इंद्रियों उपकरण सो जाने पर भी वो जो शक्ति है, वो जो चेतना है, वो जागृत अवस्था में ही है। जब स्वप्न अवस्था से साधक उस सुषुप्ति में पहुंचते हैं, जहां जाकर के मन भी अपने कारण में लीन हो जाता है, वहां पर भी बाह्य दृष्टि से मनुष्य कुछ नहीं पता ऐसा अनुभव करने पर भी, कुछ नहीं पता इस बोध को जो जानता है, वो जो चित सत्ता है, वो जो चैतन्य सत्ता है, जिनकी चेतना मन बुद्धि अंतःकरण उस चैतन्य में प्रदीप्त है, वो चाहे क्यों हमारे चंडाल हो, अंत्य योनि क्यों ना हो। आचार्य शंकर कह रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए भगवत भक्तजन इस संसार में आए, संसार में जब आए तब गर्भ उपनिषद को जब हम देखते हैं, बड़ा वेदना और प्रार्थना करते हैं ये जीव कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे और संसार में जाना नहीं है, इस संसार से इस बार के लिए हमें निष्कृति दे दो। क्या प्रार्थना आप करते हैं? गर्भ मुनि उपनिषद को पढ़ने पर लगता कि यही प्रार्थना हमने किया, और भगवान से हाथ जोड़ करके उपनिषद के ऋषि उस जीव की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। वही मैं गिरगिराता रहा कि इस बार के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे इस संसार में जाना नहीं है। परंतु गहना कर्मणो गति, कर्म के गति गहन है
और उस कर्म के परवश होकर के आना पड़ा इस जीव को, आते समय यही जीव प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारे कर्म के कारण आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, हे देव ऐसी बुद्धि प्रदान करो जो तुम्हें कभी न भूलूं, ये मेरी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है नारायण, कि ऐसी चेतना दो कि कभी भी हम आपको ना विस्मृत हो ना भूले। परंतु वही जीव, वही मैं उस प्रसव की वेदना से सब भूल गए, सब भूल गए, और उस अद्वितीय परमात्मा की ही व्यवस्था में आ गए, स्वकर्म से प्रेरित होकर के इस दृश्य जगत में आया, और इस जगत में आने के लिए बहुतों की कृपा, बहुतों की आशीर्वाद लेने पड़े। परंतु नारायण, आगमन के पूर्व में जो प्रार्थना हमने किया, ईश्वर से जो निवेदन किया कि कभी भी ना भूलू तुम्हें, वो प्रार्थना किसी प्रेरित से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रार्थना हृदय की प्रार्थना है, व्याकुलता की, सत्यता की, जो हमने पूर्व पूर्व जन्मों में अनुभव किया, जो हमने संसार की सत्यता को जाना, जो हम सत्य और असत्य को विचार के द्वारा प्राप्त किया था, जानकर के उस अंतर्जामी हृदयेश्वर सर्वाधार उनसे प्रार्थना किया। परंतु संसार के ऐसे माया, ऐसे मोह हैं कि संसार में आते ही मैंने किया जो प्रार्थना, मैंने जो निवेदन किया कि कभी न भूलू, वही पहले भूले, उसी को पहले विस्मृत हुए, और इतनी दुर्गति इस संसार में प्राप्त किया, अनिष्ट को अपनाया, निष्ठ को छोड़ा, अनिष्ट को ही प्राप्त किया, और आज तक वही अनिष्ट को ही उठा रहना है। परंतु वो जगदीश्वर, जगदात्मा, हृदयेश्वर कभी कभी अपने अस्तित्व का प्रबोध कराते हैं कि मैं हूं और तुम्हारी ये प्रार्थना रही। परंतु विषयों की वासना से, भोगों की लिप्सा से, आकर्षण से उस अंतरात्मा की आवाज को, शब्द को हमने सुना नहीं और भोग में ही लिपट गए, लिप्त हो गए। परंतु ये जो चारों तरफ अंधकार है, यह जो अज्ञान है, यह जो मोह है, ये जो माया है, इससे जो जीव अपने को आबद्ध समझ रखा है, इस मोह अंधकार से, अज्ञान से कौन हटाने वाला है? वो तो हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से तो हमने प्रार्थना किया था। परंतु आज हमें इस अज्ञान से कौन उठाने वाले हैं? भगवद् भक्तजन, जिस दिन ऐसा प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हमने भोगों को अपनाया,
सुख पाने के लिए, ऐश्वर्य समृद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया, परंतु इतने प्राप्ति के बावजूद भी मन के एक सुनापन, एक रिक्तता, एक अभाव, एक हाहाकार अभी भी है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं, वो जो मन के अंतस का जो भाव है, भोग ऐश्वर्य से भरा पूरा परिवार है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं अकेला हूं। भगवत भक्तजन, ये जो फीलिंग्स है अकेलापन का, ये बहुत जरूरी है अध्यात्म जीवन के लिए। उस सुनापन, उस एकाकित्व, उस अकेलापन का अनुभव जो करता है, वो फिर ढूंढता है कि इस अकेलापन को मैं कैसे मिटाऊं, और तब वो ऐसे एक अस्तित्व के पास जाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो इस संसार के अंधकार को काट करके, दूर करके ज्ञानमय प्रदीप को वो प्रज्वलित कर दे। और वही है गुरु। इसलिए गुरु अनायास मिल जाता है तो उसके मूल्य को हम देना नहीं चाहते नारायण। गुरु अगर मिला है तो ईश्वर के अनुग्रह है। गुरु अगर प्राप्त कर लिया तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, और यही दृष्टि जो है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रतिष्ठित कर रहे हैं, कि जो आप हमारे सामने उपस्थित है, खड़े हैं, अंतवेशधारी सबसे निकृष्ट ज्योनि को ग्रहण करके आप हमारे पास उपस्थित हुए हैं, परंतु बाह्य दृष्टि से क्यों ना आप अत्यंत निकृष्ट हो, परंतु हे देव, आपके चेतना जो उस अद्वितीय चैतन्य में अनुभव है, जो एक अनुश्रुत परमात्मा शक्ति सर्वत्र विराजमान है, उस शक्ति में ही जिनकी बुद्धि और मन स्थिर है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, चाहे वो चांडाल हो अथवा द्विज श्रेष्ठ क्यों न हो, वो मेरे गुरु है। इसलिए अंतिम चरण के द्वितीय तृतीय चरण में आचार्य अपने भाव को लिखते हैं।

जिनकी प्रज्ञा, जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि उसमें दृढ़ हो गया है, अर्थात जिन्होंने उस शक्ति को अथवा उस शक्ति में चित्त को टिका पाए, वो मेरे गुरु है। और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए भगवत भक्तजन गुरु वो है, गुरु वे है जो इस संसार के अंधकार से, अज्ञान से हमें उस पार ले जा सकते हैं। कहां से आया कुछ भी पता नहीं है, मृत्यु के बाद कहां जाना है कुछ भी पता नहीं है, परंतु ऐसा जो एक अदृश्य अतीन्द्रिय यात्रा में आप निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं, सोच करके घबराहट नहीं होती। अरे भाई, इस संसार में कहीं भी हम टूर में निकलते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो क्या क्या व्यवस्था हम अपनाते हैं? रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा सर्च करके एकदम पक्का करके जाते हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई तकलीफ न हो, यहां तक व्यवस्था करते हैं कि उस स्टेशन पर पहुंचने पर भी अगर कोई हमें लेने आवे तो बड़ा निश्चिंत कि हां कोई आ करके खड़ा है। इतनी व्यवस्था निश्चय खुद आपने किया, फिर भी आप बेचैन रहते हैं, निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, जब तक मिलते नहीं, जब तक वहां पहुंचते नहीं, जब तक उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं होती। परंतु कभी भी हमने ये कोशिश किया कि इस जीवन के मृत्यु के बाद भी मुझे चलना है, इस जीवन में हमने जो भी किया, जो भी संग्रह किया, जो भी अपनाया, जिनको भी ग्रहण किया, वो सब हमारे साथी है, किंतु परंतु एक समय क्यों ना अत्यंत आपन अपना क्यों ना हो, उसको छोड़कर के हमें जाना है। और इस मृत्यु के इस दीवार के बाद कौन है भाई? कभी भी हमने कोशिश नहीं किया कि बस इस शरीर को छोड़ करके, इस यात्रा को छोड़ करके आगे जो स्टेशन, जहां मेरा स्टेशन है, जिस जोनी के लिए भी हमने टिकट बनाया है, वहां पर हमें कौन स्वागत करेगा? अरे जगत में जब घूमने जाते हैं, जिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, अगर कोई अपना व्यक्ति हो, कोई होटल वाला ही क्यों ना गाड़ी लेकर आया हो, तो बड़ा निश्चिंत होते हैं। परंतु मृत्यु के बाद जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए कौन हमें स्वागत करने वाला कौन है? जहां इस जीवन में, इस वर्तमान में, इस लोक में तो हमने सारा इकट्ठा किया, संग्रह किया, अपनाया लोगों को, तो ये लोग भी तो एक सीमा तक, फिर उसके बाद ऐसा हमने व्यवस्था किया क्या? कोई आए, कोई लेख देखे? जब संसार में व्यवस्था करके भी हम यात्रा में निकलते हैं, स्टेशन पहुंचने के पहले तक, स्टेशन में ट्रेन इन कर रहे तब तक मन में जो है एक बेचैन, एक टेंशन, क्या पता वो आया कि नहीं, क्या पता वो मिलेगा कि नहीं, क्या पता कहां होगा। परंतु कभी भी हम ये नहीं कोशिश करते कि इतने आयु गए, इतने स्टेशन हमने अतिक्रमण किया, अब हमारा डेस्टिनी पहुंचने वाला है ना, अभी तक हमें बेचैनी नहीं है कि हमें कोई वहां लेने के लिए आए, हमने कोई

0: कि कोई आया, कोई मेरा नेम लिख करके खड़ा तो नहीं है, देखते हैं बेचैन होकर के। और जब मिल जाता है कि हाँ अमुक मेहतास फैमिलीज वेलकम टू, फिर कितना आनंद होता है कि हाँ बस मैं हूं, मैं अपने आप मैं हूं। परंतु ये जो मैं हूं, ये जो मिलन, कितना सुखद है। सारा टेंशन, सारा एंजाइटी, सारा दुश्चिंता खत्म। और उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, वो हमारे लगेज लेते हैं, हम निकल जाते हैं। परंतु इस जीवन के जो संधिक क्षण है, जहां उतर करके मुझे और यात्रा करनी है, ये जो स्टेशन आने वाला है, वहां हमें कौन मिलेगा? कोई हमारे लिए है, हमने कुछ व्यवस्था किया, वो व्यवस्था अगर आप करना चाहते हैं तो वो व्यवस्था में एकमात्र सद्गुरु देते हैं। गुरु वो बता देते हैं कि तुम इस जीवन के यात्रा से निकलो तो तुम इस जीवन में ऐसा कुछ कर्म करो जो तुम्हें उस स्टेशन पर मृत्यु के बाद कालांत में वो सामने आकर के खड़े रहेंगे। और व्यक्ति जब उस सद्गुरु के चरण में अर्पण कर लेते हैं, इस अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और गुरु जब वो ज्ञान देते हैं कि है कोई और उसको तुम पुकारो, उससे परिचय प्राप्त करो, वही तुम्हें लेने के लिए आएंगे, वही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, तब व्यक्ति निश्चिंत होकर के इस संसार से विदा लेते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, बड़े निश्चिंत होकर के वो जाते हैं।
1: अपॉन हियरिंग दिस अनाउंसमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली एट shaivam@shaivam.org। This radio service has been moved to a new address and the service at this address will be discontinued shortly. Therefore, please contact us immediately at shaivam@shaivam.org. Thank you. Om Namah Shivaya.